एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर सन 2026। प्रातः के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि यह घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली

0: स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, वन की अग्नि चंदन के वृक्ष को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का अहित करते समय अच्छे या बुरे व्यक्ति में अंतर नहीं करते। तात्पर्य ये कि हमें दुष्ट प्रकृति के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे अवसर मिलने पर सिर्फ हानि ही पहुंचा सकते हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आज 15वां भाग प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनिएगा हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुनिएगा सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा प्रसून जोशी पर, आलेख एवं स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

सुबह 10 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। इसके अंतर्गत पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। सुबह 11 बजे, रात्रि 11 बजे से रंग तरंग यादों की महफिल सुनेगा, दिन में 12:05 से सुरीला सफर दोपहर 1 बजे से सुनवाएंगे आपको। त्रिवेणी दोपहर 2 बजे से और सदाबहार नगमे प्रोग्राम का वक्त होता है दोपहर 2 बजकर

सखी सहेली ये कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता कंवलजीत से सविता बजाज की बातचीत सुनेगा प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। छाया गीत का पुनर्प्रसारण होता है शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा शाम 6:30 से, शाम 6:35 से सुनवाएंगे संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे से, शाम 7:45 से सुनेगा इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे से आपको सुना संतोष जोशी का चितलोक सुनेगा रात्रि 8:15 से, आपके लिए सुनवाएंगे आपको रात 9 बजे से।

छाया गीत। यह कार्यक्रम सुन सकेंगे आप रात 10 बजे से। आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, रात 10:30 से, और रंग तरंग सुनिएगा रात 11 बजे से।

अपनी राजसभा में अंगद की चेतावनी और चुनौती सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसे लगा कि ये मूर्ख वानर ये नहीं जानता कि कुंभकर्ण जैसा वीर उसका भाई और इंद्र को परास्त करने वाला योद्धा मेघनाथ उसका पुत्र है। वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बांध लेने से राम की किस वीरता का परिचय मिलता है। समुद्र तो पक्षी भी लांग जाते हैं। अपने हाथों अपना सिर काटकर शिव के समक्ष अग्नि में होम कर देने वाला वीर अन्यत्र कौन है? रावण अपने बल और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए कहता है, मेरी भुजाओं के बल रूपी समुद्र में कितने ही देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। अब कौन ऐसा शूरवीर है जो इनकी अथाह गहराई को पार कर सके? यदि तेरा स्वामी इतना ही बलशाली है तो फिर दूत क्यों कर भेजता है? शत्रु की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते उसे लज्जा का अनुभव नहीं होता? इन भुजाओं को देख, जिनसे अपना सिर काटकर मैंने होम कर दिया था। अंगद बोले, सिर काटकर होम कर देना एक मायावी द्वारा रचित इंद्रजाल का कर्तव्य है।

0: श्रोताओं नमस्कार। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 15वीं और आखिरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला के इस अंतिम कड़ी में आप सभी का स्वागत है, और स्वागत है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी का।
2: नमस्ते
1: शकुंतला जी। इस अंतिम कड़ी में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो संगीत आज के दौर में गाया जाता है, जो संगीत प्रचलित है, उसमें ऐसे माहौल में शास्त्रीय संगीत का घरानेदार जो संगीत है, उसका क्या भविष्य आप देखती हैं?
2: आज के आधुनिक युगों में संगीत की अनेक शैलियों का विकास होने के बावजूद भी
1: जी,
2: घराना परंपरा का महत्व आज भी अक्षुण्ण और अखंड बना हुआ है। एक संगीत घराना यानी सिर्फ गायन की एक शैली नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध सांगीतिक परंपरा, सौंदर्य दृष्टि और गुरु शिष्य परंपरा का जीवन स्वरूप है
1: जी।
2: है ना? प्रत्येक घराना अपनी विशिष्ट गायकी, स्वर विन्यास, राग विस्तार तथा सौंदर्य बोध के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। ये अलग पहचान रखते हुए एक कलाकार विभिन्न घरानों का अध्ययन और श्रवण अवश्य कर सकता है, वहाँ कोई रोकता नहीं है, जिससे उसका संगीत दृष्टिकोण व्यापक होता है, मान लिया। किंतु किसी एक घराने की परंपरा, एक ही घराने की परंपरा में विविध और विधिक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसकी गायकी में विशिष्टता, शास्त्रीयता और एक स्वतंत्र सांगीतिक व्यक्तित्व विकसित होता है, और यही घराने की वास्तविक देन है, ऐसा नहीं लगता आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आज आवश्यकता है इस बात की कि घराना परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करते हुए उसे वैश्विक स्तर पर नई पीढ़ी तक पहुँचाना, ये हमारा काम है। इससे भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हम परंपरा में फिर एक बार जा रहे हैं तथा विश्व भर में उसकी प्रतिष्ठा और अधिक सुदृढ़ होगी ही होगी, क्योंकि आज किराना घराना विश्व भर फैला हुआ है
1: जी।
2: इसका कारण क्या है? एक घराने में जो गायक पैदा हुए ये प्रतिभावान थे
1: जी,
2: लेकिन उसके साथ भी हर एक पीढ़ी में एक एक गायक कलाकार ऐसे बन गए कि ये परंपरा और उसकी जो गान शैली वो अच्छी तरह से आगे लेके जा सके। विभिन्न घरानों का अध्ययन कलाकार के लिए उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। किंतु किसी एक घराने की परंपरा और साधना अगर आप करते हैं तो उसकी गायकी में एक विशिष्ट शैली, अनुशासन और अलग पहचान विकसित होती है, और यही घराना परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें, मुझे लगता है। जयंत जी, हमारे किराना घराने के महान आचार्य और कलाकारों ने अपनी साधना तथा संगीत के माध्यम से इस परंपरा को विश्व भर प्रतिष्ठित किया है
1: जी।
2: आज हमारा भी दायित्व है कि हम इस अमूल्य सांगीतिक विरासत का सम्मान करें, उसका संरक्षण करें, नई पीढ़ी तक उसे पहुंचाएं, ताकि भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये गौरवशाली

0: परंपरा आने वाले समय में इसी प्रकार सुरों की मधुरता के साथ निरंतर प्रवाहित होती रही।
1: जी,
0: इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है आज की इस श्रृंखला का हम विराम
1: समापन करेंगे।
0: और
1: जैसे संगीत की बैठकों में अंतिम राग गाया जाता है वो भैरवी होता है, तो क्या हम भैरवी की कोई बंदी सुनेंगे?
0: बहुत ही फेमस ठुमरी दादरा जो समझो,
1: हाँ।
0: बेगम अख्तर, बाद में शोभा गुरुटू, बहुत सारे ठुमरी गायकों ने गाई है
1: जी।
0: और छोटी सी गायिका मैं भी हूँ, मुझे भी लगाए गाकर लोगों तक पहुँचाए।
1: क्या बात,
0: हमारी अटरिया
1: स्वागत है।
0: चढ़ जाओ, फाइव गंगा अजरे तमरे मध्यम।

0: शकुंतला जी, इसी के साथ हमारी श्रृंखला का आज यहाँ समापन हो रहा है और विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और संगीत सरिता के सभी सुनने वालों की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही आपको तबला संगत कर रहे थे रोहिदास परब जी, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और हारमोनियम पर संगति कर रहे थे ऋषित होनावरकर जी, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 15वीं और आखिरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/vbsmumbai पर जरूर हमें बताएं।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर। श्रोताओं, कभी आपने गौर किया है, कुछ चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं होती, वे हमारी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। एक पुराना रेडियो, किसी गीत की धुन, पुरानी तस्वीरें, पुराने दोस्त और वो पुरानी शामें। जब घर में सबसे बड़ा साधन हुआ करता था दूरदर्शन यानी टीवी। आज के दौर में हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सैकड़ों चैनल हैं, एक क्लिक पर हजारों चैनल है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब टीवी घर पर आने वाले कार्यक्रम के लिए पूरा परिवार इंतजार करता था। टीवी के सामने जगह पहले से तय होती थी। कोई कहता, अरे हट जाओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कोई आवाज बढ़ाता और कभी तस्वीर खराब होती तो एंटीना ठीक करने की कवायद शुरू। लेकिन मजा देखिए, उस समय टीवी कम थे मगर साथ ज्यादा था। आज का कार्यक्रम उसी साथ की याद है। आज हम बात करेंगे उस दूरदर्शन की, जिसने भारत के घरों में सिर्फ तस्वीरें नहीं पहुंचाई बल्कि कहानियां, संगीत, समाचार, ज्ञान और यादें पहुंचाई। तो आइए थोड़ा आज से पीछे चलते हैं, उस दौर में जब घर में टीवी आना किसी त्योहार से कम नहीं होता था।

दोस्तों, जब टीवी घर की चीज नहीं सदस्य थी, घर में टीवी आने पर अलग ही उत्साह होता था। घर में टीवी रखने की जगह बनाई जाती थी, छत पर चढ़कर एंटीना ठीक किया जाता था और शायद यही उस दौर की खूबसूरती थी। तब साधन कम थे, संतोष ज्यादा था। दूरदर्शन की सबसे खूबसूरत बात यही थी, टीवी पूरा परिवार साथ बैठकर देखता था। बच्चे अपना कार्यक्रम देखना चाहते थे, बड़े समाचार देखना चाहते थे। किसी को फिल्म का इंतजार होता था तो किसी को गीत संगीत का। और कभी कभी टीवी देखने से ज्यादा मजेदार उसके सामने होने वाली बातचीत होती थी। तब स्क्रीन एक थी, सामने पूरा परिवार। मगर आज सबके पास अपनी अपनी स्क्रीन है। आज दुनिया भर का मनोरंजन अपनी अंगुलियों पर पा सकते हैं। आज हम किसी भी कार्यक्रम को जब चाहे देख सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन के जमाने में कार्यक्रम देखने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता था। जब कार्यक्रम आना होता था तभी देखना पड़ता था, ये नहीं बाद में देख लेंगे। ना रिकॉर्डिंग की सुविधा, ना मोबाइल में सेव करने का विकल्प। कार्यक्रम छूट गया तो बस छूट गया, और शायद यही इंतजार उस समय के मनोरंजन को और भी खास बनाता था। आज हमारे पास मनोरंजन की कमी नहीं है, लेकिन उस दौर में मनोरंजन के लिए समय निकालना पड़ता था।

दोस्तों, दूरदर्शन ने भारतीय दर्शकों को केवल मनोरंजन ही नहीं दिया, उसने हमें देश के अलग अलग हिस्सों से परिचित भी कराया। समाचारों के माध्यम से देश दुनिया की जानकारी पहुंचाई, शैक्षणिक कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को सीखने का अवसर दिया, कृषि कार्यक्रमों से किसानों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाई, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कला की दुनिया घर घर तक पहुंचाई। यानी दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ साथ जानकारी और शिक्षा को भी घर घर तक पहुंचाया। वो दिन, वो साथ बहुत प्यारा था।

दोस्तों, समय बदलता गया, टेलीविज़न के चैनल बढ़े, केबल आया, रंगीन प्रसारण आम हुआ, सैटेलाइट चैनल आए, फिर इंटरनेट आया और अब मोबाइल की स्क्रीन पर सब मौजूद।

विरोध है, लेकिन इस पूरे बदलाव के बीच दूरदर्शन की एक खास जगह बनी रही, क्योंकि दूरदर्शन केवल एक प्रसारण का माध्यम नहीं था, वह उस पीढ़ी का साझा अनुभव था, ऐसा अनुभव जिसे लाखों लोग एक ही समय पर देखते थे और अगले दिन उसकी चर्चा करते थे।

श्रोताओं, आज भी क्यों याद आता है दूरदर्शन? क्योंकि हमें शायद सिर्फ दूरदर्शन याद नहीं आता, हमें अपना बचपन याद आता है। हमें वह घर याद आता है जिसमें सब साथ बैठते थे। हमें वह शाम याद आती है जब काम जल्दी करने की कोशिश होती थी क्योंकि टीवी पर कार्यक्रम आने वाला होता था। हमें वो चेहरे याद आते हैं जो आज शायद हमारे साथ नहीं हैं। इसलिए पुराने टीवी कार्यक्रमों की याद आते ही मन में एक अजीब सी गर्माहट पैदा होती है। तकनीक बदल गई, स्क्रीन बदल गई, देखने का तरीका बदल गया, लेकिन उन शामों का, उन यादों का रंग अब भी नहीं बदला।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी यह खूबसूरत मुलाकात यहीं विराम लेती है। उम्मीद है दूरदर्शन के साथ बिताया यह समय आपको कुछ पुरानी यादों में ले गया होगा और कुछ नई बातें भी दे गया होगा। समय चलता रहता है, कार्यक्रम खत्म होते रहते हैं, लेकिन अच्छी बातें और अच्छी यादें हमारे साथ बनी रहती हैं। तो मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नए अंदाज और एक नई मुलाकात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार अलवर, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

दिल तो पागल है। इस फिल्म में आप सुन रहे थे उदित नारायण और लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी का गीत था, संगीत उत्तम सिंह का।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में आप सुन रहे थे तुम बिन फिल्म से ये गीत। फैज अनवर का गीत था, संगीत निखिल विनय का।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सैनिक इस फिल्म में आप सुन रहे थे साधना सरगम और कुमार सानू को। गीत के बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का।

0: जिस पे मैं लुट गई दिल भर।
1: रंग फिल्म से सुन रहे थे आप ये गीत। आवाजें अलका याग्निक, कुमार सानू और एस सुनंदा की। गीत के बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का।

आंदोलन फिल्म में आप सुन रहे थे कुमार सानू और सपना मुखर्जी को। समीर का गीत, संगीत नदीम श्रवण का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

सरकार ने कहा 2,000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को

0: अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक

0: अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
2: Given a choice, a judicial officer,
3: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
2: इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर मस्ट डील विद इट।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति

0: जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले दो से तीन दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा ₹2000 तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत आकाशवाणी अलवर का। ये सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू,

मुकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है। प्रिय उद्घोषक जी, मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर, छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपको आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपको आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओं, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं, जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ। लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं, और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान

0: को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम,
4: हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
2: यस मैम।
1: ऑलराइट, यू ऑल नो दैट pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes, pets
5: are so lovely.
1: Right, Soham.
6: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
6: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
7: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
8: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
1: Oh, that's so exciting, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
2: Yes, ma'am.
1: Can you name some birds?
3: Sparrow.
1: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
5: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
1: Yes, peacock is a colorful bird.
5: Ma'am, parrot.
1: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
9: Any guesses?
1: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
2: Yes, ma'am.
5: It will be fun.
1: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
2: As you know.
1: How to be beautiful. He wanted to know.
2: Colorful feathers.
1: He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail.
2: Then he found another.
1: He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head.
2: I am now beautiful.
1: He danced

0: Ma'am, brown.
1: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
1: Right.
2: Crow is also black, ma'am.
1: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
2: Ah! Ah!
1: Now you all know about the sounds of birds.
2: Great. Yes, ma'am.
1: So children, did you like the poem?
2: Yes, ma'am.
3: We loved it.
1: Okay. And the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
1: Then let's clap for each other. Yay!
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
5: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी? तो सुनो।
6: बाबू, स्वामी विवेकानंद आए हैं, उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
7: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
6: अच्छा बाबू।
7: और सुन
6: जी,
7: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी। हैं? भगिनी निवेदिता
6: हैं?
7: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
6: क्या कह रहे हैं बाबू? मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
7: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
6: अच्छा?
7: हाँ, बंगला बोल लेती है।
6: ओ।
7: बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
6: अच्छा?
7: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
6: वो तो ठीक है, पर बाबू।
7: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है। जा, भाग यहाँ से। पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
8: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
7: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
9: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारे तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
7: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
9: धन्यवाद।
8: अब बताइए बोस बाबू
7: जी,
8: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
7: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
9: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
7: नुकसान तो है सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा

0: का कारण पूछने लगेंगी। समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी। तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
1: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू? जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
0: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
1: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
2: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
1: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
2: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू जी, यहीं बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
0: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय
2: में? वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
0: चलिए तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती। कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
1: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं? शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
2: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
6: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
1: फिर तुमने क्या कहा?
6: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
1: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
6: हाँ दीदी।
1: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
7: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
1: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़े हैं, भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
7: अच्छा दीदी।
1: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े ही थोड़ी लौट जाने देंगे।
6: दीदी ये लीजिए आसन।
1: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा, क्या कहती है?

0: आप गीता भागवत का पाठ करते हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता?
1: जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
0: वही तो मैं भी कहती हूँ। शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
1: हाँ सो तो है।
0: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं। मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
1: तबीयत तो ठीक है।
0: अच्छा मेम दीदी अब मैं चलूंगी,
1: कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी
0: और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
1: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
2: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन, निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जैसलमेर की पोकरण रेंज में हो रहे भारतीय वायुसेना के ड्रोनाथॉन 2026 में स्वदेशी ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। और प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हुई, उदयपुर संभाग में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस जनादेश से साफ हो गया है कि जनता डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास नीतियों का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार के हर वर्ग की सेवा और खुशहाली के इरादे को मजबूती मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत के कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं। आयोग को इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराबी की शिकायतें मिली थी। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान करवाया जाएगा। 17 सितम्बर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका

0: पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं। आयोग को इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराबी की शिकायतें मिली थी। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान करवाया जाएगा। 17 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका को छोड़कर शेष सभी 305 नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव की लोक सूचना आज जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुबह 7 बजे अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार अध्यक्ष पद के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 और 22 सितंबर को चुनाव होगा। आज और कल अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। स्थगित अध्यक्षीय चुनाव वाले 4 निकायों में वोटों की गिनती के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव की लोक सूचना जारी कर दी जाएगी। निकाय चुनाव परिणामों पर और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत 2 चरणों में हुए इन निकाय चुनावों के परिणामों के साथ ही प्रदेश में शहरी राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। 309 में से 85 निकायों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। 46 निकायों में कांग्रेस बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की स्थिति में है। 12 नगर परिषद में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। बाकी 177 निकायों में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है, जिससे बोर्ड गठन में निर्दलियों और अन्य दलों के पार्षदों की अहम भूमिका रहेगी। इन नतीजों में कई प्रमुख राजनीतिक चेहरों को हार का सामना करना पड़ा। जयपुर में पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल और बीकानेर की पूर्व महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित चुनाव हार गईं।
0: भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इस मीट का आयोजन किया गया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल मीट की अगुवाई करेंगे। राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त मनीषा अरोड़ा भी BIP और RICO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीट में शामिल होंगी। इसके तहत विभिन्न प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद, सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाएगी। इस दौरान ओडिशा के प्रमुख उद्योग समूहों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों के साथ खनन, धातु प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा, वस्त्र और परिधान तथा पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में साझेदारी के लिए बैठकें होंगी। गौरतलब है कि प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले साल से 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। इसी पहल के तहत राज्य सरकार विभिन्न शहरों में उद्योग जगत से सतत संपर्क और संवाद को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में गौवंश को लंपी बीमारी से सुरक्षित रखने और इसकी रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। वहीं गौवंश में संक्रमण की रोकथाम के लिए आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से पशु मेलों और हाटों के आयोजन पर रोक लगाई गई है। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने कल जयपुर में पशुधन भवन में इस संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लंपी रोग की वर्तमान स्थिति, टीकाकरण और घर घर चलाए जा रहे सर्वेक्षण अभियानों की जानकारी ली। श्री भाले ने अधिकारियों को जिला स्तर पर रोजाना स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पहले ड्रोनोथॉन की जैसलमेर के पोखरण में कल से शुरुआत हुई। मानव रहित युद्धक क्षमताओं को नई धार देने के उद्देश्य से 3 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वायुसेना के उप प्रमुख वाइस एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। ड्रोनोथॉन 2026 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देना है। ड्रोनोथॉन पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: 16 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन के तहत पोखरण रेंज में युवा और काउंटर UAS तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में लाइटरिंग म्यूनिशन, लॉजिस्टिक ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, AI आधारित तकनीक, स्वायत्त नेविगेशन और उन्नत पैलोड जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। इन तकनीकों के जरिए निगरानी, लक्ष्य भेदन, लॉजिस्टिक और ड्रोन से उत्पन्न खतरों से निपटने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।

0: जयपुर संभाग और आसपास के जिलों में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बाकी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। इस बीच कल राजधानी जयपुर सहित 15 शहरों में पानी बरसा। झालावाड़ के रायपुर में सबसे ज्यादा 3 इंच बारिश दर्ज की गई। उदयपुर के कोटड़ा में भी करीब 7 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, जालौर और राजसमंद में भी बरसात का दौर चला। बाड़मेर जिले के सेड़वा और धनाऊ इलाके में कल शाम कुछ देर तेज बारिश हुई। वहीं 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज गर्मी और उमस का असर बना हुआ है।
1: मॉनसून के दौरान कम बारिश के चलते भीषण गर्मी और उमस का दौर बना हुआ है। खेतों में समय पर फसलों को पानी नहीं मिलने के कारण अधिकांश फसलें भी झुलस रही हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से फसलों में हुए खराबे की विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं। बरसात नहीं होने के कारण जिले में सिंचित करने वाली नहरों में भी पानी काफी कम है। ऐसे में सिंचाई विभाग की ओर से भी आगामी सीजन में किसानों से कम पानी की पैदावार वाली फसलों की बिजाई करने की अपील की गई है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
0: भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी इलाके के मनसा गांव में बिजली गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए कोटड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर से गाजे बाजे और लवाजमे के साथ ये शोभा यात्रा निकलेगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचेगी। यातायात पुलिस की ओर से शोभा यात्रा को देखते हुए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और बदलाव प्लान जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी, विवादित लेन देन और मनी म्यूल खातों से निपटने के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तैयार किए गए इस मसौदे के तहत साइबर ठगी की जांच के नाम पर पूरे खाते को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज करने के बजाय संदिग्ध राशि को ही रोका जाएगा। बैंकों की ओर से लगाया गया ये अस्थायी डेबिट होल्ड अधिकतम 60 दिनों के लिए वैध होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन, निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जैसलमेर की पोकरण रेंज में हो रहे भारतीय वायुसेना के ड्रोनाथन 2026 में स्वदेशी ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। और प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। उदयपुर संभाग में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना था बेशरम फिल्म का गाना, अमितोष नागपाल, सुजीत शेट्टी और रणवीर कपूर की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं एक पारंपरिक रचना जिसे गाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने, संगीतबद्ध भी किया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने ही। फिल्म का नाम है जुग जुग जियो।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश पद्मावत फिल्म से आवाजें श्रेया घोषाल और सुरू खान की, एम तुराज के बोल और संजय लीला भंसाली की है तर्ज़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: बजता ही रहूं।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आपको

जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर।

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से एमबीए की। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक अब भी जारी रहा और उनकी कॉपीराइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा।

तक प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छपकर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए। ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

प्रसून जोशी ने इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती की पटकथा भी लिखी और इस फिल्म के गीत भी रचे। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी की।

इस फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल दो बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीन पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। बोलो

0: जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।
1: अरे शक्ति मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा।

अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था, और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा।

0: लगता है।
1: प्रसून जोशी का रचना कर्म अभी भी जारी है और उनके चाहने वाले उनसे नित नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना? बोलो बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा।
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम। लेते हैं थोड़ा सा विराम।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
5: अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
6: पोषण सप्ताह

0: सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
1: जी।
0: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज में, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है।

0: ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो, या कॉलेज में जाके सिखाना हो, या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
0: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो।
1: जी जी,
0: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, उनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी बिल्कुल,
0: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी,
0: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे, डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं, जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम कर रही है, बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो, मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहाँ पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त, जैसे मोरिंगा हो गया, या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए, या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीजें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
1: जी, आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में, कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बॉटल या 2-3 गिलास पानी, तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
0: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता।
1: जी सही,
0: उसको सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे, थोड़े थोड़े वक्त पे, थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा।
1: जी जी,
0: ना बॉटल से, आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो, थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि

0: आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भागदौड़ की जिंदगी में कि आप वो एक दो सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको एक ग्लास एक घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे, ये जरूरी है। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है। आप बैठकर पियो, खड़े रह के पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज है, आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप

0: प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3-4 महीने में।
1: जी बिल्कुल।
0: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
1: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
0: बहुत महत्व है।
1: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ। कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
0: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
1: जी।
0: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं। डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए। और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है।
1: बिल्कुल,
0: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं, अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं हैं, या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होता।
1: अच्छा।
0: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह के कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी

0: कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी
1: कौन सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार।
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात मन ठीक रहता है।
0: हाँ,
1: मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है, ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी।
1: आपकी भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आप उसी को निकाल दो।
0: जी जी।
1: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज का।
0: बिल्कुल।
1: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो

0: होते हैं ना जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं, मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं।
1: जी जी जी।
0: तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो, तो ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है
0: इसमें? सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हैं और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है, तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में एक चौथाई धान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
1: जी जी,
0: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है। और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
1: जी, खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो, उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
0: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
1: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए?
0: ऐसा जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूंगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से, शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके 2 खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे 1 रोटी या 2 रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है, तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा।
1: जी जी, अभी 2 टाइम का भी
0: बहुत ज्यादा
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली भी। तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल

0: ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी,
0: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाड आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाड हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाड पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-10 बजे चला जाता है, तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते हैं, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी जी, एक गाना सुने।
0: जी
1: कौन सा?
0: क्यों ना ये जीवन है, पिया का घर।
1: जी, इस जीवन का यही है रंग रूप।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है। और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या IBS IBD जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए।
0: जी जी।
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए। और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इशू हो और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ की आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं,
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
1: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
0: जी।
1: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर तीन चार बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका भी इस्तेमाल करें, जैसे कोडो हो गया, कांग हो गया, पोर्सो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान है, वो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनोआ हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनोआ को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनोआ को किनोआ ही बोलते हैं।
0: सावा
1: नहीं, सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बानियार्ड मिलेट।
0: जी जी।
1: तो
0: जी।
1: ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखे

0: रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो ये थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
1: एक गाना सुने
0: जी।
1: कौन सा
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।
0: एक

0: तो जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं।
1: जी
0: धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं,
1: हाँ,
0: बल्कि कोदो और जो नाम
1: बहुत
0: आपने
1: ज्यादा।
0: बताया।
1: और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहां हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है,
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते
0: सिर्फ
1: हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद चावल,
0: चावल। बिल्कुल, और खुश।
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का
0: ब्राउन
1: इस्तेमाल
0: राइस
1: करें।
0: भी एक आता है।
1: ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है, अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता, उसका
0: अच्छा,
1: सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
0: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
1: आज भी वही
0: धान को
1: इस्तेमाल,
0: उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं,
1: हाँ,
0: वो बहुत
1: हमारे यहाँ
0: मोटा
1: उकड़ा
0: होता है।
1: तांदूल बोलते हैं
0: हाँ
1: महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: जिसमें अच्छा ब्रांड भी होता है, विटामिन भी होते हैं,
0: हाँ
1: वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
0: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खासतौर से, अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन, तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
1: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से

0: ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए।
1: ओहो,
0: छोटे चम्मच, 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं
1: जी।
0: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया। हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर एक महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है
1: जी।
0: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे। विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है
1: जी। जी,
0: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है,
1: बिल्कुल,
0: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ होने ही वाली है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है, और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: वो इस्तेमाल आप कर सकते हो
1: जी। बिल्कुल, घानी का तेल, यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताजा तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर
0: जी।

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं, तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं। बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे के रूप में
1: जी,
0: पूड़ी और पराठे के रूप में
1: बहुत ज्यादा।
0: अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है छोटा बम बड़ा धमाका है। छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही

0: कर लीजिए और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए, जैसे आपको खजूर मिल जाएगा या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया या आपने छोटा चिक्की चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है, तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
1: जी जी।
0: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया, मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है।
1: जी।
0: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है, जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो,
1: खीर घर में बना के।
0: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म, तो आपने एकदम एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की, इसकी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो है ना वो भी थोड़े चेंज हो गए, उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी एक चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है, वो क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी है वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले, तो हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है।
1: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें,
0: हाँ,
1: तो वो भी ठीक नहीं है।
0: ठीक नहीं है
1: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके हाँ, शरीर में जा रहा है जो
0: कुछ लोग
1: है।
0: ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
1: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ, एक गाना सुने
0: जी।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम। सुन लेते हैं थोड़ा सा विराम।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा। हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, ये प्यारा सा कलाम अभी आप सुन रहे थे। वाजिदा तबस्सुम का था ये कलाम, जगजीत सिंह की आवाज़ और एल्बम इन सर्च से हमने लिया था इसे। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लोक गीत कजरी, हेमंत कुमार की आवाज़ है।

श्रोताओं, कजरी के रंग से आप सराबोर हो रहे हैं, तो चलिए एक और कजरी आपको सुनवा देते हैं। मनोरमा श्रीवास्तव ने गाया है इसे, मिर्जापुर कैला गुलजार हो।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। तो लीजिए सुनिए सुरैया की आवाज में मिर्जा गालिब का ये कलाम जिसे संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने। फिल्म का नाम भी है मिर्जा गालिब।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं एक राजस्थानी लोकगीत मारा रंगीलो राजस्थान, और इसे गाया है शोभा गोटू ने, संगीतबद्ध किया है बाबू सिंह ने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं कबीर दास जी के कुछ दोहे, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने और इसे संगीतबद्ध भी किया है जगजीत सिंह जी ने ही।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं मिश्र संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत जिसे गाया है सुजाता चक्रवर्ती ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। अम्बिका
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए एक कव्वाली जिसे गाया आशा भोसले और साथियों ने। साहिर लुधियानवी के हैं बोल और रोशन की है तर्ज। फिल्म का नाम दिल ही तो है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक और कव्वाली के रूप में इस्माइल आजाद कव्वाल और साथियों ने गाया, से शेवन रिजवी ने लिखा, बुलोसरी रानी की तर्ज है, फिल्म का नाम अल हिलाल। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर

और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा साल

0: ग्राम विधानसभा सीट से हंसी रानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: ये सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए सबसे पहले सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आशा भोसले और अनवर की आवाजों में। लिखा है इसे निदा फाजली ने।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और अनवर की आवाजों में। निदा फाजली के बोलते खयाम का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अधूरा आदमी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम। लेते हैं थोड़ा सा विराम।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे के जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

0: नमकीन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत था। बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे दो जासूस फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर केंद्र है। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केशाऊ बांध परियोजना को लेकर आज नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 6 राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इनमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश अपने हिस्से का पानी दिल्ली और राजस्थान को देगा। इसके बदले दिल्ली और राजस्थान हिमाचल के हिस्से की बिजली लागत वहन करेंगे। गौरतलब है कि केशाऊ बांध यमुना की प्रमुख सहायक नदी टोंस पर बनाया जा रहा है। इससे यमुना बेसिन में पानी का बहाव बढ़ेगा, जिससे दिल्ली सहित अन्य राज्यों में पानी का संकट दूर हो सकेगा और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और रुपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड से 2,000 रुपए तक के लेन देन या भुगतान पर शुल्क नहीं लगा सकते। सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रदाता इन माध्यमों से लेन देन करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकते। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। इनमें विशेष रूप से रुपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड और यूपीआई से 2,000 रुपए तक के लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले महीने सरकार ने स्पष्ट किया था कि उपभोक्ताओं से यूपीआई पेमेंट पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागरिकों से भारत की शाश्वत लोकतांत्रिक भावना को आगे बढ़ाने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को अपनी लोकतांत्रिक परंपरा पर गर्व है। इधर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर में आयोजित भारतीय युवा संसद कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है।
3: लोकतंत्र दिन एक देश या किसी क्षेत्र की संपत्ति नहीं, बल्कि यह जनता की स्वेच्छा से व्यक्त की गई इच्छा पर आधारित एक सार्वभौमिक मूल्य है। सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार और सम्मान।
2: राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है।

है। इसकी शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के तहत प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर की गई थी। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देने के साथ ही संस्कृति को समृद्ध करने और राष्ट्रीय एकता में दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए दूरदर्शन 100% आबादी तक पहुँचने वाला संचार माध्यम है। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है। भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया की जयंती को इस दिन के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। हर साल इस दिन इंजीनियरों की भूमिका को सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री विश्वेश्वरैया विलक्षण इंजीनियरिंग प्रतिभा थे। राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी दूरदृष्टि हमेशा नागरिकों को प्रेरित करती रहेगी। संवत्सरी पर्व आज मनाया जा रहा है। जैन धर्म की श्वेत

गृहमंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री विश्वेश्वरैया विलक्षण इंजीनियरिंग प्रतिभा थे। राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी दूरदृष्टि हमेशा नागरिकों को प्रेरित करती रहेगी। संवत्सरी पर्व आज मनाया जा रहा है। जैन धर्म की श्वेतांबर परंपरा में पर्युषण महापर्व के अंतिम दिन संवत्सरी मनाई जाती है। इस अवसर पर उपवास सहित विविध प्रकार के तप किए जाते हैं। इसे क्षमावणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

आवाजों में नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था, पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द और लंबी तादाद में जवाब दिया, शशि कपूर और राखी, राखी डबल रोल में। एक श्रोता की टिप्पणी है, मुझे तो चांद बहुत सुकून देता है, शायद इसलिए इसको शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कल शाम तीज पर्व पर अपने हमसफर के साथ दूसरी मंजिल की खिड़की में चांद को निहार रहे थे, तब हम बीते बरस के अनगिनत रंगों में सराबोर होकर गुनगुना रहे थे, खुद पे इतराते हुए, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, मनमीत के साथ बिताए पलों को याद करते, कब रात बीत गई पता ही न चला, सहसा चिड़िया चहकने लगी, कितना सुकून था उन पलों में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि रात के हम सफर थक के घर को चले, फिर चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, ये तो कहो कौन हो तुम, कोई मतवाला आया, जरा सी आहट होती है, आज मदहोश हुआ जाए, बेताब दिल की तमन्ना हो, दिल की तमन्ना थी मस्ती में। क्या बात है भाई, आपने तो बहुत सारे गानों के बोल लिख डाले हैं, और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। जरा अब अगली फिल्म के लिए लिखिए कि ये फिल्म आपने कब और कहाँ देखी थी, एक बात। दूसरी बात, कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन, किन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, कोई बात नहीं, जो जवाब आपको सूझे वो दी।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी और जॉय मुखर्जी आशा पारेख पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारे श्रोताओं ने इसका जवाब भी सही दिया और बहुत जल्द जवाब आया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज की इबारत सुरमयी पुकार है, जब चांदनी रात में किसी गीत के वादी संवादी सुर मिलकर सतरंगी आसमान खोलते हैं, यादों की खिड़की खोलकर जब कोई मतवाला मनमीत द्वार पर दस्तक देता है तब रूह का कोना कोना रोशनी से जगमगा उठता है। जीवन के अनगिनत रंग लिए इन गीतों में उड़ने को अनंत खुला है और डूबने को अतल गहराइयां भी। चांदनी रात में गीतों की तान जब सोए कंदीलों को जगा देती हैं तब हम सफर के साथ तारों जड़ी ओढ़नी ओढ़कर कोई प्रियतमा पैरों के झांझर उतार बेताब दिल की तमन्ना लिए किसी योगी की तरह गीत की तरंग में ध्यानस्थ हो जाती हैं। गीतों की मीठी विकल पुकार के साथ पलके नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मन को पंख और कल्पना को परवाज देते अमर और मधुर गीतों की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। क्या बात है भाई, बहुत ही ललित भाषा में आपने ये इबारत लिखी है और बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि यादों की खिड़की खुली तो जीवन के अनगिनत रंग नजर आए, मनमीत की मीठी यादें मन में हलचल मचाने लगी, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, ओ मेरे हम सफर मेरे हम सफर। बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इन टिप्पणियों के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने आपसे कहा कि आप भी इबारत लिखिए तो आप सभी लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं लिखी है इबारत वो भी लिखें और जो शब्द हमने दिए हैं उन शब्दों को शामिल करते हुए भले ही दो तीन लाइन की इबारत लिखे हम जानना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी के भीतर एक कहानीकार छुपा होता है, एक कवि छुपा होता है जिन्हें बस कहने की जरूरत होती है, तो टटोलिए कहीं आपके भीतर भी कोई कथाकार तो नहीं छुपा। फिलहाल चलिए अगला गाना सुनते हैं, बूझना है आपको फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल है, फिल्म का नाम बूझना है और फटाफट बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर चाहें तो गीतकार का नाम भी बूझ सकते हैं और ये भी बताइएगा कभी आपने गुनगुनाया है इस गाने को

फिल्म थी दी ट्रेन, और यही था हमारा सवाल। श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने बहुत जल्द लिख दिया दी ट्रेन यहाँ कि मैंने पूछा और उधर उनके जवाब आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से आप फौरन जवाब देते रहिए और हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिन्होंने इबारत नहीं लिखी है वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लंबी इबारत लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लव इन टोक्यो के लिए कि ये बड़ा ही बेहतरीन गाना है, इस गीत में किसी प्रिय के आने की खुशी, मन की हल्की सी शरारत और प्रेम की मीठी आहट महसूस होती है, जैसे किसी की दस्तक से अचानक सूना सा मन भी खिल उठे। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, सुनते ही लगता जैसे कोई चुपके से मन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी हो। गीत की मिठास लता जी की आवाज मिलकर प्रेम की ऐसी हल्की सी आहट देती है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जा रहा था मंदिर दर्शन करने, सोचा दर्शन के बाद रोज के कामकाज यानी दुकान खोलने के लिए दर्शन करने के बाद रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया। कहने लगा बहुत दिन हुए कोई फिल्म देखने चली, मॉर्निंग शो में राज कपूर जी की फिल्म चल रही है आवारा देखी, लगता है कोई पुरानी बात इन्हें याद आ गई। और जरा बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगला गाना कौन सा होना चाहिए, कहीं आपकी प्लेलिस्ट में यही गाना तो नहीं जो हम सुनवाएंगे, जरा बूझिए ये भी। और अगले दो तीन गाने आप सुझाइए, हम आप जो सुझाएंगे गाना वही गाना आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ इबारत वाले शब्द होने चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मेरा मनमीत जो मुझे अनायास एक चांदनी रात में ट्रेन के सफर में मिल गया, एक रात के लिए मेरा हम सफर, ट्रेन की खिड़की यादों की खिड़की बनी, कितनी अनकही बातें जबान पर आ गईं और ट्रेन रुकी, उसको जाना था मुझे भी, अब के बिछड़े कभी न मिलने को। चलिए अब बारी है गाने की, गाना सुनिए और बूझिए जरा फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम, साथ में गीतकार का नाम, देखते हैं गीतकार का नाम सही बता पाते हैं आप या नहीं।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने गीतकार का नाम पूछा था, बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, कुछ अधूरी रह गई तमन्नाओं के जख्मों को, नगमे अपनी मरहम से नासूर बनने से रोकती है, एक ऐसा ही गाना है। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। एक श्रोता ने लिखा है कि खो जाती सुधबुद जब खुलती यादों की है वो खिड़की, इस चांदनी रात की शीतलता अंतर मन को है छूती, वो हम सफर बना मनमीत जब चले हैं बन साथी, जीवन के अनगिनत रंगों की परिभाषा तब है सजती। भाई जो आपने इबारत लिखी है उसके जो शब्द मैंने दिए थे उन शब्दों से गीत के बोल नहीं लिखे, जरा वो शब्द टटोलिए और उसके गीत भी लिख डालिए। अभी हमने आपसे पूछा था कि कौन से वो गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं इस समय, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है और कुछ श्रोताओं ने नहीं लिखा है, तो हम जो गाने आप लिख रहे हैं वही गाना हम अगला सुनवाएंगे। उसके बाद कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जरा फिल्म का नाम जरूर लिखिए। एक श्रोता की टिप्पणी है कि गीत सिर्फ कागज पर लिखे शब्द न रहकर सुरों की सांसें पाते हैं तो वो सीधे रूह में उतर जाते हैं। हिंदी के सुरीले और ललित गीतों का यही तो जादुई असर है। इनमें कहीं किसी की यादों की महक है, कहीं पहले मोहब्बत की मासूमियत है, तो कहीं तन्हाई का सुकून भरा सन्नाटा है। कभी कोई धुन दिल के सुनेपन को गुदगुदा जाती है, तो कभी कोई बंदिश आंखों में गुजरे जमाने की कोई खास तस्वीर सजा देती है। बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी लिख रहे हैं आप, जरा छोटी छोटी टिप्पणी लिखिए ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल हो सके। अब जरा सुनिए ये गाना, आप सभी की ओर से गाना आया है, बताइए फिल्म का नाम और गीतकार संगीतकार का नाम भी। इबारत में कौन सा शब्द है जिसके जरिए ये गाना सुनवाया जा रहा है।

आशिक फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और कुछ श्रोताओं ने बहुत सही जवाब दिया, सही जवाब दिया और जल्द जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है और अभी भी कुछ श्रोता लिख रहे हैं। तो आप अब बताइए कि अगला गीत कौन सा लिया जाए, मतलब आपके जहन में कौन सा गीत आ रहा है, हमारी इबारत से शब्द चुनकर बताइएगा और तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर और विविध भारती सुनते सुनते कभी गर्म कभी ठंडी हवाओं के झोंकों से यादों की खिड़की खुल जाती है और मन पुरानी यादों में खो जाता है। याद आती है वो बहुत सारे प्रोग्राम के नाम लिखे हैं, भूले बिसरे गीत और ऐसे गीत जो जीवन से आज भी जुड़े हैं, जीने का सहारा बनते हैं, जैसे एक दिन बिक जाएगा, नदियां चले चले रे धारा वगैरह वगैरह। भाई भूले बिसरे गीत तो आज भी प्रसारित होता है सुबह 7 बजे, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के गीत न होते तो हम सभी संगीत प्रेमियों श्रोताओं का जीवन नीरस हो जाता। ये बात तो बिल्कुल सच है, हम सभी का जीवन नीरस हो जाता। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ललित गीत केवल शब्द और सुरों का मेल नहीं बल्कि मन की अनकही भावनाओं की आवाज होते हैं। इनमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द कह नहीं पाते मगर एक मधुर गीत उन्हें सहज ही दिल तक पहुंचा देता है। और दोस्तों यूं भी होता है कि जब हम एक गीत सुन रहे होते हैं तो मन में बहुत सारे विचारों का झोंका आता है। तो आप बताइए कि आपके मन में इस समय कौन से विचार आ रहे हैं और साथ में आप मन की बात को कब कब सुनते हैं, मतलब मन में जो बातें आपके भीतर आती हैं तो वो कैसे आप मानते हैं। कई बार मन बहुत कुछ कहता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन में जो बात आती है लगता है इसे किसी तरह से हम पूरा कर लें। तो एक शब्द आज की इबारत में मनमीत है, उससे जुड़े हुए कौन से गाने हैं जरा बताते चलिएगा। फिलहाल प्रेम पुजारी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम।

दोस्तों, हमने आपसे मनमीत शब्द से गाना पूछा है जिसमें मीत शब्द भी चलेगा, वो गाने आप बताइए। बहुत सारे श्रोता इबारत लिख रहे हैं लेकिन गाने के बोल फिल्म का नाम नहीं लिख रहे हैं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था और हमने आपसे फिल्म का नाम भी पूछा था, गीतकार का नाम भी पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि ललित गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गायकी होती है। ओपी नैयर, रवि जयदेव, एआर रहमान जैसे महान संगीतकारों ने इन ललित शब्दों को ऐसे मधुर धुनों में पिरोया जिससे गीत केवल सुनने तक सीमित नहीं रह जाते बल्कि दिल में असर करते हैं। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मन का अंतर्द्वंद्व और उसका बोलना मनुष्य के जीवन की एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन गहरी स्थिति है। कहते हैं कि मन कभी कभी बहुत बातें करता है, मतलब है कि हमारे भीतर विचारों का एक ऐसा ज्वार उठ रहा है जिसे शांत करना मुश्किल हो रहा है। जब बाहरी दुनिया में हमारे पास बात करने या व्यस्त रहने का कोई साधन नहीं होता तब मन खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद से ही बातें करने लगता है। दोस्तों हम तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कब आप अपने आप से बतियाते हैं, कब अपने मन से बतियाते हैं, कब वो लम्हा कौन सा होता है जब आप खुद से गुफ्तगू करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात में जब हम सफर साथ हो तो सिर्फ सफर रास्तों का नहीं होता, वो यादों का सफर बन जाता है। यादों की खिड़की से झांकता हर बीता पल कभी मुस्कान देता है, कभी आंखें नम कर जाता है। मनमीत के साथ तो जीवन के अनगिनत रंग और भी गहरे हो जाते हैं। और हमने आपसे पूछा था मनमीत शब्द से कौन सा गीत, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने अभिमान फिल्म का गाना लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है और हमारे पास ये गाना है, तो जरा सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म का।

मृग तृष्णा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार थे शंभू सेन, और हमारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब बिल्कुल सही दिया है और बहुत जल्द जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नगमों की दुनिया निराली होती है, कुछ नगमे तराने बन दिल की देहरी लांग ताऊ उम्र साथ चलते हैं, कुछ पुरानी अधूरी यादों को दस्तक दे जाती हैं, कुछ तन्हाई के आलम में हम सफर अतीत वर्तमान और आगामी अनंत काल तक एक सुखद एहसास प्रदान करती है। एक श्रोता ने लिखा है, आपके शब्द हमारी कविता, जीने के अनेक ढंग है, जीवन के अनगिनत रंग है, यादों की खिड़की खोल कर देखो, मेरे मन मीत चांदनी रात थी तुम भी साथ थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात थी, खिड़की से झांकती चांद को निहारती, यादों के पन्ने को पलटने लगती है वो, हम सफर के साथ बिताए उस मीठे पल का एहसास मन को आनंदित कर देती है, जीवन में कई सुनहरे रंग खिल उठते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, आज का सफर आपके साथ अपने खूबसूरत शब्दों की इबारत है, कितने सुंदर और भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक शब्द के भाव और उनको संगीत के सुर में उतारना, हर भाव को जीवंत होते देखना है, जीवन के हर पड़ाव में इस तरह की बातें आम बात बन जाती हैं, कुछ यादें बन जाती हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है, एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, और साथ साथ नगमे गाए थे हम सफर मेरे, और गानों के बोल लिख के इन्होंने माला पिरोई है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं और बूझिए जरा गीतकार संगीतकार का नाम। फिल्म है आखिरी दांव। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है।

आखिरी दांव फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज़। गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्द जवाब दिया। मजरूह सुल्तानपुरी मदन मोहन संगीतकार। और एक श्रोता ने लिखा है वाह वाह वाह जबरदस्त गीत। एक श्रोता ने लिखा वाह क्या गीत है, तेरी एक नज़र की बात है। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्म पत्नी अगर रूठ जाए तो मुझे फिल्मी गीत गाकर मनाना पड़ता है। और एक श्रोता ने लिखा है नूतन बुआ जी शेखर जी मजरूह सुल्तानपुरी। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के लिए लिखा है वाह वाह। तो अगर आपको लगता है कि अगला गीत भी आप करना चाहते हैं वाह वाह और आप सभी की पसंद का हो तो लिख डालिए अगला गीत कौन सा होना चाहिए। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हमसफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की से बीते लम्हे भी मुस्कुराने लगते हैं। कभी मनमीत की मीठी यादें दिल को छू जाती हैं तो कभी हमसफर का साथ जीवन को और खूबसूरत बना देता है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलने देना छोड़कर। भाई क्या बात है, गाने तो आप बेहतरीन चुन रहे हैं लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी चुना है। तो देखिए आपने भी चुना था क्या ये गाना, जरा फिल्म का नाम बताइए और आवाजें किसकी है बूझिए जरा। बहुत ही आसान सवाल पूछा है, देखते हैं कितनी जल्दी जवाब आता है। अगले गीत की फरमाइश भी आप कर सकते हैं, अगला गीत कौन सा होना चाहिए, हम वही गाना बजाएंगे जो आप चाहेंगे सुनना।

बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बूझा, आवाजें भी सही बूझी। मुकेश की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज, भला कौन नहीं पहचान सकता है। और अगले गाने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप लिखिए कौन सा गाना हो सकता है। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब आएगा चांदनी रात में, ये वाला गाना। लेकिन और भी गानों के लिए जिक्र किया है श्रोताओं ने, तो हम चाहते हैं कि और जो गाने हैं उसका भी जिक्र कीजिए। ये गाना अब आप अक्सर सुनते रहते हैं विविध भारती से, हम वो गाना सुनवाएंगे जो आप अक्सर नहीं सुनते हैं, तो जरा और गाने भी याद कर लीजिए, शायद आप वाला गाना ही हम आपको सुनवा दें। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि वाह, मैं सुरीला सफर का पोस्ट पढ़ने से अनुमान लगा रही थी कि आज अवश्य आप आएंगी, और देखिए आपका आगमन हो गया और आपकी बात कहने का अंदाज एक अलग ही स्तर का मन मोह लेता है, और आप सभी का अंदाज हमारा मन मोह लेता है। आप सभी जिस अंदाज में टिप्पणियां लिखते हैं तो हम भी मोहित हो जाते हैं कि कैसे आप इतनी जल्द जवाब देते हैं, कैसे इतनी सारी इबारत लिख लेते हैं, हमें भी अचरज होता है और अच्छा भी लगता है। यही तो है आपका और विविध भारती का साथ, इसीलिए तो सुरीला है और हमेशा हमेशा के लिए है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हमसफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की खुलती है, ये वाली लाइन मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मन का मीत प्रेमी प्रियतम या साजन हो सकता है, वहीं दूसरी ओर दिलदार दोस्त या मित्र सखा हो सकता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने आज इबारत लिखी है और हमने कोशिश की कि सभी की टिप्पणी आज हम शामिल करें। अब सुनिए ये गीत और जरा याद कीजिए, आपने सोचा था कि ये गाना आप सुन सकेंगे, फिल्म का नाम अगर बता सकते हैं तो बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आपको ही बताना है, बूझिए फिल्म का नाम। गाने के बोल तो समझ गए होंगे ना अब तक, या अभी नहीं समझ में आया, इंतजार कीजिए अभी बोल आ ही जाएगा।

फिल्म का नाम दोस्तों हमने आपसे पूछा था, फिल्म थी मुक्ति। मुकेश की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जानकारी बिल्कुल सही दी, हमें लगता है आप सभी की जानकारी बहुत समृद्ध है, इसी तरह से समृद्ध बना रहे। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा, वाह वाह।

ये गाना तो बहुत दिनों बाद सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है वाह सुरीला सफर सुरीली प्रस्तुति। तो हम भी आपसे कह रहे हैं वाह सुरीली टिप्पणियां, और बड़े अच्छे अंदाज में आज आपने टिप्पणी भेजी है, इस बात के लिए सभी का शुक्रिया। अब आज का सुरीला सफर कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडियाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित कर

0: करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
1: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
2: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
3: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
5: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान

0: चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
3: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
4: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
5: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
4: आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधीश श्री।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुति कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है आकाशदीप। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। इस गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है और धुन बनाई है वसंत देसाई ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
1: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
0: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है चांद और सूरज। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

आइए सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। गायिका है सुमन कल्याणपुर और फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता,
1: मार उड़ाई
0: एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।

0: ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम था भीगी रात। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी रोशन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: आरती श्रीवास्तव का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कहिए आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चल रहा है गणेश उत्सव।
1: बिल्कुल, और हम खा रहे हैं मोदक। भाई घर घर में गणपति बप्पा के आगमन की जो तैयारी हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और लोग अपने घर पर बुला रहे हैं, बाकायदा भोजन करवा रहे हैं और गणपति बप्पा को याद भी कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, और जब अलग अलग घरों में जाओ ना, जो वो शोभा देखने को मिलती है ना, इतनी सुंदर झांकी सी सजा के रखते हैं गणपति बप्पा को, इतना सुंदर सजाया हुआ है, उनके चारों तरफ कहीं फूल हैं तो कहीं अलग अलग तरीके की उन्होंने सजावट करके रखी हुई है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम लोग हमें बुला रहे हैं और हम उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इतने सुंदर तरीके से बप्पा को उन्होंने सजाया है, आसपास गुलाबी फूल, कहीं लाल फूल, कहीं पीले फूलों से सजावट की गई है, और आसपास वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। कई जगह मैंने देखा सितार रखा है, तानपुरा रखा है, इस तरह से भी जो है उस मंदिर को लोगों ने अपने घर में सजाया है।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है देख के, एक एक सकारात्मक अपने अंदर आते हैं ना, एक ऐसी भावना आती
1: बिल्कुल,
2: है
1: बिल्कुल।
2: कि चलो ये जो त्योहारों के दिन होते हैं ना, जब हम निकलते हैं तो वहाँ भी जो सड़कों पे भी जाइए तो वहाँ पर भी इतना अच्छा सब जगह जगह देखने को मिलता है कि सजावट है, दुकानें भी सजी हुई हैं, हर जगह बहुत अच्छा लगता है।
1: लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, और कहते भी हैं कि जो गणेश जी हैं सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रतीक भी हैं, तो लोगों में जो है उनका बड़ा ही एक महत्व है। हम कितना जैसे ही हमारा कोई काम नहीं बनता हम तुरंत गणपति बप्पा मोरिया को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गणेश देवता, ये जो भी विघ्न बाधाएं आ गई हैं उन्हें आप दूर कर दें और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला दें, है ना?
2: बिल्कुल,
1: तो हम यही कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए भी कि भाई जो ये खास दिन हम मना रहे हैं, हमारे जो बप्पा हैं हमारे जीवन के सभी विघ्न हर लें और खुशियों के रास्ते हमारे सभी श्रोताओं के, सभी सखियों और सखाओं के जीवन के खोल दें, ताकि हम अपनी जो राह है जहाँ जगह जगह पर हर्डल्स हमें दिखाई देती हैं वो न दिखाई दें और हम अपना रास्ता अच्छे तरीके से तय कर लें।
2: बिल्कुल, मीठा खाते खाते है ना।
1: हाँ बिल्कुल, मोदक के साथ साथ और एक सुरीला गीत भी सुन लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे श्रोता तो जानना चाहेंगे ना, आज आप क्या विषय लेकर आई,
2: कौन से विषय पे हमें बातें करनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम लेकर आए हैं जो विषय है वो है खत्म होती जा रही सहनशीलता।
1: ओहो,
2: किस तरीके से हम अपनी सहनशीलता को खत्म करते जा रहे हैं और हम

0: उतावले हो रहे हैं हर चीज के लिए, तो इसके बारे में भी
1: हम तुरंत किसी चीज को पाना चाहते हैं ना। पहले सहन शक्ति होती थी हमारे अंदर, और अभी ये हो गया है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया है तो हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। पहले हम पहले सोचते थे, गुनते थे, मनन करते थे कि हम इसका जवाब देना भी है कि नहीं देना है ना, शांत रहते थे, लेकिन अभी तुरंत जवाब देना सीख गए हैं।
0: तो और हम सिर्फ अभी मुंह से जवाब नहीं देते, हाथ पैर भी चलने लगते हैं।
1: ये और भी गलत तरीका है। तो ये जो आपने कहा कि सहन शक्ति खत्म हो गई, इस पर वाकई हम चर्चा करेंगे और अपने श्रोताओं से भी चाहेंगे कि वो बताएं कि उनके जीवन में कितनी सहन शक्ति बची है।
0: बिल्कुल, वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत सुमिता घोष की, जो कि रंग सूत्र की संस्थापक हैं।
1: क्या बात है।
0: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
1: बहुत से लोगों का शौक होता है ये, आपको पता है ना कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
0: हर जगह
1: आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और सामने वाले का कान

0: मुंह से ही जवाब नहीं देते, हाथ पैर भी चलने लगते हैं।
1: हाँ, तो ये और भी गलत तरीका है। तो ये जो आपने कहा कि सहन शक्ति खत्म हो गई, इस पर वाकई हम चर्चा करेंगे और अपने श्रोताओं से भी चाहेंगे कि वो बताएं कि उनके जीवन में कितनी सहन शक्ति बची है।
0: बिल्कुल, वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत सुमिता घोष की, जो की रंग सूत्र की संस्थापक है।
1: क्या बात है।
0: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
1: बहुत से लोगों का शौक होता है ये, आपको पता है ना कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
0: हर जगह
1: आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और सामने वाले का कान भी कच्चा होता है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ में जुड़ा हुआ कि आपके कोई कान भर रहा है तो आप कान के कच्चे हैं, इसका मतलब आप जो बातों में आ रहे हैं
1: और बातों में आ जाते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं।
0: बिल्कुल। और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्की फुल्की बातों के अंतर्गत खाने की अतरंगी आदतों की।
1: जैसे
0: कि किसी किसी को शौक होता है ना कि जलेबी को सॉस में डुबो के खाने का।
1: ओहो, ये तो बड़ा
0: अजीब अजीब सच में मैंने देखा है, शौक होते हैं लोगों के। और इस तरीके की बातों पे हम बात करें, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, जो सखियां हैं, जो सखा हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरीके की कोई आदत है कि उनको मीठे के साथ नमकीन को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है, या कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया जलेबी को सॉस में डुबा के खाना अच्छा लगता है।
1: अच्छा।
0: तो इस तरीके की अगर आदतें हैं आपके अंदर या आपके किसी जानने वाले के अंदर, तो आप हमारे साथ उसको साझा करिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक अलग किस्म की ये आदतें हैं जो हर एक में नहीं होती और हर एक इस तरह का स्वाद लेना पसंद भी नहीं करता है।
0: जी।
1: तो आप बताइएगा कि आपके घर में आप कोई व्यंजन बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं या आपके घर में बच्चे ऐसा करते हो कि किसी चीज के साथ कोई ऐसी चीज मिला के खाते हैं, अजीब होती, कॉम्बिनेशन ही नहीं है उस चीज का, है ना। तो इस तरह की बातें हम चाहेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से हम श्रोता के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अभी गीत सुन लें।
0: बिल्कुल सुनते।

0: आरती ही गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है ये गीत,
1: बहुत है ना? प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा,
0: माना जाएगा।
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं इसे शुरू हो जाती है, है ना, सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो। और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं लोकतंत्र को।
0: हाँ?
1: बहुत छोटा सा उदाहरण है।
0: हाँ?
1: आप शायद हंस भी पड़े इस पर कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए, एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है,
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि तो ये भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: कि नहीं ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू कर दिया।
0: हाँ।
1: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: ये सबसे बड़ी बात है ना, कि हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं, लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया यही लोकतंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना, होता है ना भाई आज क्या बनाना है, तो पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है।
1: हाँ।
0: और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो बर्गर खाना है।
1: हाँ।
0: है ना, लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी बनेगी,
1: हो गया फैसला।
0: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और असंतोष घर में
1: प्रजा में
0: व्याप्त हो जाता है, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं, यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरती हमें कि अधिक

0: कलाकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है। और अब मैं भी यहाँ सम्मान करूंगी लोकतंत्र का, आपसे पूछती हूँ कि एक अंतराल ले लें।
1: बिल्कुल लिया जाए।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों और सखाओं ने,
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
1: जी, तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है,
0: यही की गीत सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: सकती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
0: कितनी बड़ी बात उनके दिमाग में आई जो कि हर एक के दिमाग में नहीं आती,
1: क्योंकि
0: है।
1: अपना तो सब सोचते हैं कि हम अपना व्यवसाय खड़ा कर लें, लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए सोच कर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी
0: बिल्कुल, और कि वही मालिक भी बने। हम क्या सोचते हैं, काम तो हम शुरू कर दें, मालिक भी हम बन जाए
1: जी,
0: है ना। हमारे विचार में यही रहता है ना ज्यादातर कि मालिकाना हक जो है हम पाना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1-1000 रुपए का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई कारीगरों की अपनी भागीदारी से। और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी। और यही रंगसूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंगसूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंगसूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
0: सबसे बड़ी बात ये थी। और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी, बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक साथ लाने की। और रंगसूत्र से जुड़े कारीगरों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
1: बिल्कुल, और यानी जो महिलाएं, उनके हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
0: बिल्कुल,
1: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
0: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
1: बिल्कुल, और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी तरफ दुनिया का बड़ा बाजार, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश, या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है?
1: रंगसूत्र।
0: और सुमिता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं, साथ में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर आप किसी हुनर, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है ना। और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना, तो अपना ही नहीं, साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन सब का भी भला करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी होकर वो लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, शुरू करती हैं छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा
1: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में।
0: इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी हैं जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती हैं और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल जाता है।
1: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए।
0: वो ग्रामीण तबके में रहकर भी
1: हम अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं
0: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है स्त्री का आर्थिक रूप से

0: हाँ तो आरती, पता है कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं ना, तो कागज के दिल पे कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और इसी चक्कर में हम साहित्यकार भी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं।

0: कभी बन जाते हैं।
1: जी
0: और कहते भी हैं कई बार आपका मन बहुत बेचैन है, मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें कागज पर लिख दो, एक डायरी मेंटेन करो, कहा जाता है ना कि डायरी लिखो, ताकि जो सहन शक्ति जवाब दे गई है वो आपकी कलम से आपकी किताब में एक संकलन के रूप में आ जाएगी।
1: और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप लिख लेते हैं ना कोई भी चीज, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, आप थोड़े शांत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत जरूरी, लिखना तो वैसे भी बहुत अच्छा है,
0: बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लेखक नहीं भी हैं तो अपनी सहनशीलता को बनाए रखने के लिए लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही गुस्सा आया, लगा कि कुछ बोलने वाली हूँ, तुरंत कागज पेन निकाला और उस गुस्से को कागज के द्वारा अंकित कर दो, तो एक बार कागज पे वो गुस्सा उतर जाएगा।
1: बिल्कुल, आप बाद में से इरेज कर सकते हैं,
0: उसे मिटा सकते हैं, आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं कागज को कि आपका गुस्सा निकल गया, लेकिन मन आपका शांत हो जाता है। तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य का फल क्योंकि मीठा होता है। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या है कि धैर्य रखने का जो कड़ा इम्तिहान है, एक तरह से ये बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है। अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारी बात काट दी, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, सड़क पर ट्रैफिक मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं, मोबाइल में हम इतना कुछ लिखते हैं, अगर हमें लाइक नहीं मिले पर्याप्त, किसी ने असहमति जता दी, किसी ने काट कर दी, किसी ने आपको पसंद नहीं किया, तो हम गुस्से से भनभना जाते हैं और लगते हैं क्या जो बात कर देंगे, और बात गर्मा गर्म स्थिति तक पहुंच भी जाती है।
1: बिल्कुल, अक्सर ट्रैफिक में तो अक्सर ही ऐसा होता है ना कि लोग एकदम से लड़ पड़ते हैं कि क्यों आप आगे निकल, अगर कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे रह जा रहा है, तो लड़ रहे हैं, मतलब कोई भी किसी भी बात पे हम लड़,
0: मतलब हम अपने वाहन में बैठे बैठे भी गुस्सा निकाल देते हैं और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कई बार हम इस तरह की पढ़ भी रही हैं स्थितियां कि ट्रेनों में दो लोगों के बीच में तकरार हुई और बात कहां से कहां पहुंच गई, यानी सहनशीलता की कमी होना।
1: बिल्कुल, और सहनशीलता का मतलब हर बात को चुपचाप सह लेना भी नहीं होता है। और जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, उस समय आप थोड़ा सा धैर्य अगर हम बना के रखते हैं ना, और दूसरों के विचार को सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, कोई भी बात हो तुरंत प्रतिक्रिया देने से ये होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं उस समय, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो हम सिर्फ गुस्से में अपनी गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो रिश्ते भी उससे खराब हो सकते हैं, दोस्ती टूट सकती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी
0: इसलिए तोल मोल की बोल कहा जाता है ना। और आज की जो टेक्नो समय जो आ गया है, इसमें क्या हो गया आरती, कि हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई, एक क्लिक में हमें सारी चीजें मिल जाती है, सामान हुआ कुछ भी कुछ ही सेकंड से हमें मिल जाता है। एक समय होता था जब हमें सोचना पड़ता था कि हमें जाना है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, अब बस केवल एक क्लिक करने की जरूरत होती है और सामान आपके घर पर आ जाता है।
1: 5 मिनट का अगर सामान हमारे पास 5 मिनट में नहीं पहुंचा, तो एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं, फिर हम उसको फिर चिल्लाने लगते हैं जो सामान लेकर आया, कि 5 मिनट से 1 मिनट कैसे ज्यादा हो गया,
0: ज्यादा कैसे आपने कर दिया। सोचिए हमारी सहन शक्ति कितना जवाब दे गई है। तो ये जो तनाव है, काम का जो दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और ये जो रोज की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है, हमारी झुंझलाहट को और हमारी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल, और जरा सोच कर देखिए, जब कोई हमारे संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता है, तो मन में पहला विचार क्या आता है कि आखिर आया क्यों नहीं जवाब,
0: क्या बात
1: लिखा था, क्यों नहीं आया उसका जवाब, शायद मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी बात जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं और यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा और सामने वाले के पास टाइम नहीं हो, या वो उस वक्त यात्रा में हो या परेशानी में हो, जवाब नहीं दे पाया हो, हमने उसका तुरंत फुरंत अपने तरीके से उत्तर निकाला और फटाफट उसे अपना ही जवाब दे डाला, और
1: या हो सकता है वो नहीं देना चाह रहा उस समय,
0: ये भी हो
1: कुछ
0: सकता
1: सोचना चाह रहा, समझना चाह रहा, या उसके बारे में पड़ताल करना चाहता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी स्थिति हो सकती है। तो सहनशीलता की जो कमी है, वो उसका असर हमारे व्यवहार पर ही नहीं पड़ता आरती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है, हम जानते हैं। और परिवार में छोटी सी बात पर बहस, दोस्तों में नाराजगी और कार्यस्थल पर मतभेद होना, इन सब के पीछे कई बार हमारी ये जो अधीरता है, यही जिम्मेदार होती है।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया ने भी हमारी सहनशीलता को कम करने में भूमिका निभाई है। अलग विचार रखना लोकतंत्र और समाज की स्वाभाविक विशेषता होती है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत विरोध मान लेना रिश्तों और सामाजिक संवाद दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कि असहमति, अगर कोई हमसे असहमत है तो हमें लगता है कि वो हमारे विरोध में है, हम उसकी विचार को नहीं जानना चाहते, वो किस तरह से क्या सोच रहा है वो उसको नहीं जानना चाहते, बस हम सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम उसका सम्मान भी नहीं करना चाहते कि उसके विचारों का हम सम्मान करें। अगर वो हमारे हमारे विरुद्ध कोई बात कह भी रहा है तो पहले समझें कि वो क्यों कह रहा है।
1: सबका अपना अपना नजरिया
0: विचार हो सकता है, नजरिया हो सकता है आपके प्रति, और सहनशीलता को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है।

0: उसके लिए ये जरूरी है कि हम धैर्य रखें, धैर्यपूर्वक दूसरे को सम्मान दें, सुने, दूसरी व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें और गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दें, कुछ देर रुकें, सोचें, दूसरे की सोच को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत ही हो और हम ही सही हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही जरूरी बात ये भी है कि हमें छोटी छोटी बातों को जाने देना सीखना होगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता और कई बार हमारी चिड़चिड़ाहट हमारे जो सामने है उसके सामने वाले की गलती से ज्यादा हमारी अपनी थकान और तनाव का परिणाम होती है जो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं इस समय। तो हम अक्सर सहनशीलता को कमजोरी मान बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है।
0: बिल्कुल, हमें लगता है आक्रामक रूप बनाए रखना ही आज के जमाने में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता, आपकी सहनशीलता बहुत बहुत मायने रखती है आपके लिए,
1: एक अलग पहचान बनाती है कि इतना सब सामने वाला इतना गुस्सा हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, लेकिन आप एकदम शांत खड़े,
0: आपने अपनी सहनशीलता को बनाए रखा है, कितनी बड़ी बात है। इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम समझते हैं कि अरे सामने वाला कितना कमजोर है, देखो इतना सुनने के बाद भी चुप बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है ना। ये जो
1: चुप बैठना है सबसे बड़ी ताकत,
0: बहुत बड़ी, और सामने वाले को भी हिला कर रख देती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, आपकी चुप्पी। तो सहनशीलता का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है, और देखा जाए तो अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण रखें, अपने आप अपने भीतर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे को धैर्य से सुने, रिश्तों को समझें और कम बोलें, सोच समझ कर बोलें, तो विवाद भी कम होगा। और जब हम किसी की असहमति का सम्मान करेंगे तो लोगों में हमारा संवाद भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मतभेद को विवाद बनाना भी जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा ठहर जाना, और सबसे जो कहते हैं ना सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम होता है
0: वो ये होता,
1: तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, और दूसरे को भी समझने की कोशिश करिए कि वो अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, क्या है। तो उसके बिना आप एकदम से प्रतिक्रिया मत दीजिए,
0: मत दें, और स्पेस दें खुद को भी और दूसरे के विचारों को भी, ताकि सोचने समझने का मौका मिले। एक श्रोता लिखते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है। ये हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, कुछ उत्तर स्वयं समय दे देता है। सहन करने की अपनी गरिमा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते खामोशी से बच जाते हैं और कुछ सच वक्त के साथ सामने भी आ जाते हैं,
1: है ना। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि सहनशीलता का मतलब हर बात सहना नहीं बल्कि हर बात पर रिश्ता को तोड़ना नहीं होता है। कुछ बातों को समझकर कुछ को मुस्कुराकर छोड़ देना ही शायद रिश्तों की सबसे खूबसूरत समझदारी है।
0: और हमारी श्रोता ने बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे आज के जो भी सेगमेंट्स हैं उन पर, कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज, आरती जी का साथ, सखी सहेली सजाए हर दिन नई बात, लोकतंत्र का संदेश, सहनशीलता की पुकार, सुमिता घोष संग रंग सूत्र की सुंदर बहार, कान भरना मुहावरे की दुनिया का ज्ञान, खाने की अतरंगी आदतों से मुस्कान, विविध भारती की ये प्यारी सी महफिल, मंदाकिनी जी आरती जी बनाए हर पल दिलकश मंजिल।
1: बहुत अच्छा लिखा है। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सहनशीलता की बड़ी जरूरत होती है, मगर आज के युग में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर से खोती जा रही है वो है सहनशीलता का गुण। आक्रामकता को इंसान अपना गुण मानने लगा है, जीवन में आक्रामकता पूरा धागा ही उलझा देती है, ये इंसान सोचता ही नहीं। सहनशील और धीर गंभीर इंसान की छवि अलग ही दिखती है, सो सहनशील बनिए और जीवन को सुगम बनाइए।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। एक श्रोता लिखती है कि जहाँ सहनशीलता है वहाँ प्रेम, सम्मान और रिश्तों की गर्माहट भी बची हुई है, वरना आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, बस ठहर कर सुनने और समझने का धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी सी बात पर नाराजगी, जरा सी असहमति पर रिश्तों में दूरी और अपनी बात मनवाने की जिद सहनशीलता को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि खत्म होती जा रही सहनशीलता का कारण मानसिक तनाव है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मानसिक दबाव और धैर्य की कमी होती है। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव है। इसके द्वारा तुरंत मिल रही जानकारी या मिल रहे मैसेज ने पुराने जमाने के खत लिखने के धैर्य भरे दौर को खत्म कर दिया है। मतलब हम जो सोच समझ के लिखते थे, दो दो तीन तीन दिन में खत
0: पहुंचते थे
1: जी, तो वो मजा इस टेक्नोलॉजी में कहां जो खतों के इंतजार में पोस्टमैन की राह तकते रहने में हुआ करता था। सहनशीलता पाने के लिए तनाव को छोड़कर शांत लहरों पर जीवन की नाव पर सवार होना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। और अब हम भी गीत संगीत की नाव पर सवार हो जाते हैं,
1: गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, जब हम बात कर रहे हैं आदतों की कि हमारे अंदर सहनशीलता का होना कितना जरूरी है, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो हमारी हमें हंसी का पात्र भी बना देती हैं, है ना। अभी बताऊं तुम्हें, आज जब मैं सुबह चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ हमेशा, आज मैंने सोचा कि नमक का पराठा खा लूं और चाय में डुबो कर खा लूं, है ना, तो कैसा लगेगा। और बाद में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन मैं सोच रही थी, ये खाने का भला कोई ऐसे खाता है क्या।
1: लेकिन सच में मजा आता है,
0: मजा आता है। तुमने खा के देखा है इसका मतलब?
1: मैंने खाया है,
0: ठीक है।
1: और मतलब हर व्यक्ति का खाने का अंदाज अपना अपना होता है। किसी को गरम गरम रोटी के साथ ठंडी ठंडी दही पसंद होती है, तो कोई चाय के साथ नमकीन की जगह बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा लेता है। कुछ आदतें इतनी अनोखी होती हैं कि सामने वाला देखकर बस यही कहता है कि भला ऐसे भी कोई खाता है। जैसे कि मैं खाती हूँ, कैसे, जलेबी को सॉस में
0: डुबोकर
1: जी।
0: और मैंने देखा हमारी एक नून है, वो पहले दाल पी जाती है और उसके बाद जो चावल है ना वो सूखे खाती है। तो हम उन्हें हंसते थे कि अब आप क्या गोल गोल लौटने वाली हैं कि दाल चावल मिल जाएगा आपका। वो ऐसे ही खाती थी, पहले दाल का कटोरा जो लिया और दाल पूरी पी ली, उसके बाद वो सूखे चावल, जो सफेद चावल हम उबाल के रखते हैं, उन्हें खाती थी। तो ये भी एक अजीब ही किस्म की आदत है, जिसे हम कई बार जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चों में तो ऐसी आदतें हमें मिल जाती हैं कि सब्जी अलग, रोटी अलग, दाल को चावल के साथ मिलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोगों को, मैंने जैसा तुमने कहा, मीठी जलेबी और सॉस के साथ खाती हो तुम, और कुछ लोग खाने को बहुत धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट एक रोटी को दो ही उसमें खा लेते हैं टुकड़ों में। तो ये खाने के जो तरीके हैं, हालांकि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात

0: कि इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खा रहे हो लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी एक श्रोता है जो लिखती है कि आज खाने की अतरंगी आदतें देखकर मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए और जिस घर में रहने के लिए आए वहाँ के मकान मालिक के बच्चों को हमने देखा कि वो चावल के साथ दूध का पाउडर खाते थे। उनको देखकर हमें भी शौक चढ़ा पर हम लोग नहीं खा पाए। सच में तो बहुत ही अलग चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि खाने की आदतें, भाई आदतें सभी की अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर कहने ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द या ये तो कार्यक्रम से स्पष्ट हो सकता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि हमारे मूड, दिमाग और विज्ञान से गहराई से भी जुड़ा है। भावना और मूड का असर खाने की तीव्र इच्छा अक्सर तब होती है जब हम तनाव में होते हैं या हमें किसी अपने की याद आती है। कई बार खाने के तुरंत बाद घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है क्योंकि हमारा पेट हमारे दिमाग से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर नाक बंद हो तो हमें खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता और 80% हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। और अचानक कभी कभी किसी खास चीज को देखने से भोजन से अरुचि हो जाती है या हमें कह जैसे उल्टी महसूस होने लगती है। तो जब तक आपकी तीव्र इच्छा नहीं हो आप कोई भी चीज नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए।
1: जी, और एक हमारी सखी हैं जो लिखती हैं कि सखियों कभी कभी हरी मूंग की दाल वाली खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है कभी, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा,
1: तो इन्होंने यानी खिचड़ी में गुड़ डाल के खाया तो ये भी हमें करना चाहिए ट्राई इसका मतलब। और हमारे साथी जो लिखते हैं कि खाने की अतरंगी आदतें, भाई आदतें तो सभी अच्छी ही हों ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि है तो फिर कहना ही क्या, लेकिन अतरंगी शब्द है या अतरंगी ये इन्होंने कार्यक्रम में स्पष्ट होगा तो अब इनको शायद स्पष्ट हो गया होगा।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर वालों की आदत है कि कटोरे में ही दाल सब्जी को मिला के मिक्स करके खाते हैं और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे घर वालों को लगता है कि जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कि खाना खाने से इससे स्वादिष्ट लगता है, मतलब एक ही कटोरे में दाल चावल मिक्स करके खाया जाए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे घर वालों की आदत है समोसे में सब्जी को पूरी तरीके से मिक्स करके खाने की, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग कहते हैं कि एक बार खाकर तो देखो, पर मैं इसे आज तक नहीं खा पाई। इन दोनों ही तरीकों को मैं कभी भी नहीं मतलब ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि कभी दाल भात को साथ नहीं खाया इन्होंने एक कटोरे में लेकर और ना समोसा खा पाए हैं।
1: अच्छा, तो होता है ना कुछ अतरंगी आदतें ऐसी होती है ना कि समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों होती है, मतलब इस तरह से हम कैसे खा लेते हैं। दूसरे को जब हम खाते देखते हैं ना तो लगता है कि कैसे खा रहा है इस तरीके से।
0: हाँ, एक लिखते हैं कि हमें कभी कभी बूंदी में सेव मिलाकर खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है। हाँ, बूंदी और जो भुजिया जिसे हम नमकीन भुजिया उसे मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को वो भी पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल, सबके अपनी अपनी आदतें अलग अलग तरीके से होती है।
0: हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की आदतें, अतरंगी खाना खाने की आदत, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अलग तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए और जिस घर में रहने आए वहाँ के मकान मालिक के बच्चे को हमने देखा कि वो, अच्छा अभी तुमने बताया कि चावल के साथ वो दूध, अमूल दूध इस्तेमाल करके खा रहा था, तो ये देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई, उन्होंने इसको खा के देखा लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक लिखते हैं कि मुझे चाय के साथ कुल्फी चूसना बेहद पसंद है।
1: अरे भैया, चाय के साथ कुल्फी, सर्दी गर्म नहीं होता है, बिल्कुल अलग है।
0: हाँ, वैसे मुझे भी एक साथी मिले और उन्होंने कहा कि अभी कॉफ़ी पी है, चलिए अब जो है हम आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब गर्म दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भाई ये कैसी आदत है आपकी, लेकिन वो आराम से कर रहे थे इन बातों।
1: बिल्कुल नहीं, जिनको आदत होती है ना इस तरह की चीज़ें खाने की तो उनको कोई परेशानी नहीं होती, खा
0: लेकिन हमें तो हो जाती है। अभी हमारे श्रोताओं को हो जाएगी अगर हमने उन्हें एक गाना नहीं सुनवाया तो।

0: तो हमारा एक सेगमेंट तो रह गया अभी, यानी कान भरना, मुहावरों की दुनिया।
1: क्या बात है, हाँ हाँ।
0: तो कान भरना, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कान भरना मतलब कान में कोई भौतिक चीज या वस्तु को भरना नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, चुगली करना या उसके प्रति गलत भावना या संदेह पैदा करना होता है। गुजराती में इसे कान भंभेरणी बोला जाता है।
1: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना यानी चुगली करना, मेरे हिसाब से चुगली करने वाले से ज्यादा गलती चुगली सुनने वालों की होती है, क्योंकि यदि हमसे कोई चुगली कर रहा है और अगर हम उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो सामने वाला दोबारा चुगली करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि किसी के मन में दूसरे के प्रति गलत या नकारात्मक बातें डालना, उसे भड़काना, जैसे कि हम कोई दो लोग अच्छे मित्र हैं तो उनके बीच में एक तीसरे व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी दूसरे के कान में, तो इससे दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा हो जाए, तो इसे कान भरना कहते हैं।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना, भाई कान है तो भरे ही जाएंगे ना। फिर कर्ण पूरण की विधिवत विधि भी बताई गई है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कर्णेन्द्रिय का विकास भी होता है, किंतु यहाँ कान भरने का तात्पर्य किसी के खिलाफ किसी को उकसाने मात्र से ही है, और कच्चे कान वाले लोग इसके शिकार शीघ्र बन जाते हैं, और इस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और एक और हमें जो श्रोता जो लिखते हैं कि चुपके से किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहना जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लगे या उस पर शक करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कानों में घोला गया जहर रिश्तों को अंदर से खोखला बना देता है और इसका कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और कह कही इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है जब हम जिक्र करते हैं कान भरने का। तो अब तो कार्यक्रम का समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और कान भरें अपने श्रोताओं के।
0: बिल्कुल।
1: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: कमलजीत जी, नमस्ते।
2: नमस्कार।
1: आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
2: जी।
1: अच्छा, आज के माहौल में जब टीवी का बोलबाला है और आप करीब हर चैनल पर नजर आते हैं, तो कैसा लगता है ये सब देखकर?
2: बड़ा अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को।
1: अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए, फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका?
2: देखिए, सिनेमा से मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहाँ न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल, तो मैं करूँगा।
1: तो इसी बात पे गाना हो जाए आपकी पसंद का?
2: जरूर।
1: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?
2: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था
1: जी,
2: तो उस जमाने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी, शंकर हुसैन, उसमें गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियाँ धड़कती हैं।

0: आपने संघर्ष तो खूब किया
1: जी।
0: और बहुत समय लगा मुझे लगता है पहचान बनाने में, तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: के कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है, कुछ लोग बुनियाद काफ़ी देर तक बनाते रहते हैं। तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफ़ी टाइम ले लिया, और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिसिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था।
1: जी
0: उसी से बात बनी ना?
1: जी जी जी, उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह, तो ये कंपटीशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है, मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपको आपके चलते हैं, आप चल रहे हैं, आपका काम अप्रिसिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास अगर पहले दो मरीज आएँ और वो आपके हाथों मारे जाएँ, तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता है।
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत किए, शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की, एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए, तो फिल्म और सीरियल
1: आप शिकायत कर रही हैं या बता रही हैं? मुझे समझ नहीं।
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी ऑन करती हूँ तो आप ही आप दिखाई देते हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो असल में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज़्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूँ जिसे।
0: अच्छा, एनीवे
1: तो क्या कह रही थी आप?
0: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है? जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है?
1: नहीं, अभिनय में फर्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो, और है भी थोड़ा सा, वहाँ पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर में। जी हाँ, थिएटर में
0: जी।
1: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, डायरेक्शनल टेक्निक्स में फ़र्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉर्ट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहाँ निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता है।
0: फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
1: क्यों हम लोग टेलीविजन में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं।
0: यही बात तो उगलवाना चाह रही
1: थी। गुस्सा आ गया, गुस्सा दिलवा के।
0: अच्छा, जब शुरू शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर से

0: माफ कीजिए छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्यालात हैं इस बारे में?
1: देखिए मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं, मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूँ, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया, लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहाँ पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है, इट इज़ अ ग्रेट मैजिक, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है, लेकिन क्योंकि सर्वाइवल हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
0: बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए।
1: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं
0: जो आपको पसंद हो।
1: गालिब की एक गजल है मुझे बड़ी पसंद है और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
0: वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, मतलब प्रवेश करते थे, और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं उसी में आ रहे हैं। सीधी बात है।
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा

0: आए फिल्म में वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
1: मतलब रोजी रोटी का सवाल है
0: नहीं, रोजी रोटी के
1: शायद...
0: नहीं, भाई वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूँ तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूँगा, सीधी बात। अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूँगा, ये है।
1: अच्छा, स्टार सिस्टम इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
0: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
1: बिजनेस
0: जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा? तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
1: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है?
0: नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली
1: है ना,
0: जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी कि पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप? पॉपुलर हर जो चीज़ है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
1: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
0: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था इनिशियली,
1: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
0: एक तो
1: कहाँ तो उम्मीद जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिलेगा।
0: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पर ट्रेन में बम्बई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये कोई कहता है?
1: कोई नहीं कहेगा।
0: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को एक साल दे, दो साल दे, ढाई साल दे, तीन साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूँ और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं कहूँ कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
1: कमल जी, जिंदगी का सफ़र तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहा है, कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
0: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं। तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? हमने माना दिल्ली में रहें मगर खाएंगे क्या?
1: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है
0: जी,
1: तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
0: नहीं नहीं, क्यों, मैं जेलेसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है तो वो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सैक्रिफाइस और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सैक्रिफाइस करने की वो है
1: ताकत
0: इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया, शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट्स अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा

0: बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ। तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं, तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर हैं तो घर नहीं है। उसके उसके जहन में घर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए। ये
1: तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
0: नहीं
1: पति
0: नहीं
1: के लिए।
0: नहीं वो वजह बहुत छोटी थी, मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड।
1: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना।
0: सुंदर सी बीवी के लिए
1: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए कितनी।
0: तो चलिए बीवी की बात चलिए, तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं,
1: कौन सी फिल्म का?
0: उत्सव का। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका।

0: अच्छा, आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी हाँ, क्योंकि मैं सहारनपुर का हूँ
0: जी
1: और मेरा ना कोई चचा, ना कोई ताया, ना कोई अंकल, ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूँ। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस पे जाऊँ, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी, थोड़ा वो शायरी का शौक।

0: था, जो दोस्त लोग दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, उन वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फ़ैन था, देव साहब का फ़ैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फ़ैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ दिले देव साहब के फ़ैन होते थे, बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था।
1: तो कोई फिल्म देखी थी, उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी?
0: नहीं,
1: या कोई ड्रामा किया, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ जहन पर, दिमाग पर?
0: मुझे बेसिकली क्या, सबसे जो जहन में प्राइम चीज़ थी वो ये थी कि अपने दो पाँव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी ज़िंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ समझा तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया,
1: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना?
0: नहीं, स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था,
1: नहीं
0: इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हमने हम सेलेक्ट हो गए।
1: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा आपने?
0: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को ये कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीज़ें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आई थिंक इट्स द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: अच्छा, आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना, तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है। तो आपकी क्या ख्याल है इस बारे में?
0: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊंचे होंगे, क्योंकि और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था
1: जी,
0: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था। तो देखिए, ये एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़े ही आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है, एक 60वां भी होगा वहाँ, तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अब तेरा नंबर 60 यहाँ आया, कहीं कोई और चीज़ जिम में ट्राई करेगा वहाँ नंबर 1 हो जाएगा। तो आपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए, ये
1: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ, चप्पा चप्पा कोशिश करते रहना चाहिए। इसी बात पे आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना माचिस फिल्म में,
0: माचिस
1: हो जाए,
0: बिल्कुल हो जाए,
1: जलाइए चप्पा चप्पा चरखा,
0: जलाइए माचिस
1: तो सुनते हैं वही गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले
0: जी।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, तो अपने बच्चों के साथ अब और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज़्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना?
1: अब बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था, मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वो यूज टू एंजॉय दैट नंबर, तो वो सुनवा देते हैं।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना लगता है।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन आप लाइए प्रोड्यूसर तो मैं ये भी कर डालूंगा।
0: 20-25 साल हो गए आपको लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभी नहीं ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की बाग
1: कभी मैं उसका मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो। देखिए मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पुणे से यहाँ आया था, बड़ा मजा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सीखते हैं, साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम ही इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूँ तो मैं ज़रूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए गोता
0: चांस लेना
1: हाँ चांस लेना चाहूंगा।
0: अच्छा, फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी,
0: किसी में हाँ। भी। अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगर आप मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। हाँ देखिए आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज़्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूँ डायलॉग लाइन को यूँ करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियाँ नहीं हैं, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियाँ, हम सोचने वाले जीव जंतु हैं। और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज़ जो है या ये लाइन ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा ज़रूरी है।
0: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना ज़रूरी है। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने देखा है कई एक्टर बड़े अच्छे हैं बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
1: मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए।
0: वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की और उसके आप तो बहुत सीढ़ियाँ आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती, आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो

0: कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। मैं कोशिश नहीं करता पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है, मैं पीछे देखता ज्यादा नहीं हूँ।
1: मतलब जो छूट गया वो छूट गया।
0: मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है, या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं, इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज़्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये सब भी नहीं। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
1: वाह वाह।
0: हाँ, तो ये काम अच्छा लगता है,
1: मतलब छैया छैया।
0: हाँ, छैया।
1: तो आइए फिर सुनते हैं छैया छैया।
0: बेशक
1: है, आपको पसंद है ना?

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा एक्टिंग
1: देखिए बेसिकली
0: मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं, वेदर कैमरा इज ऑन और
1: नहीं। ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है, जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे
1: के सामने, उसमें से एक्टिंग बिल्कुल

0: खत्म कर दूं।
1: अच्छा,
0: तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं, तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद ख़त्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा मैं, मुझे शौक है खेलने के, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में, स्कूल में भी, और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं, और टेनिस से बहुत लगाव है, बहुत इश्क है, और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती
1: शीशे टूट जाते हैं
0: तो जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे।
1: अच्छा, तो आप उनकी मदद भी करते होंगे किचन में, या वो आपकी ही मदद करती रहती हैं?
0: नहीं, मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि, और अकेला रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया, और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
1: अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
0: जी हाँ, एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है, और वो आने वाला है। बाकी तीन ऑलरेडी चल रहे हैं, तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। ये ख़त्म होने वाले हैं कुछ, सांस जैसे हुआ ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दूसरा आई टेक ऑन, एक आधा पायलट किया हुआ है, और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है। तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को,
1: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप।
0: हाँ, जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन मैं जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। तो अच्छा अच्छा, आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद है?
1: मुझे, आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी सत्ते पे
0: सत्ता, सत्ता। जी हाँ जी,
1: है ना?
0: हाँ, तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया।
1: ले आया,
0: चलिए साहब।

0: अच्छा कमल जी
1: जनाब,
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभिनय नहीं करता, मैंने जैसे शुरू में बताया मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में, तो वहाँ इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह, तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ इस काम से कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाता है।
1: हाँ, बेकार
0: कुछ कर ही नहीं सकता एक्टर बनके।
1: नहीं, एक्टर बनके बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इसको इससे
0: मतलब इश्क हो जाए,
1: अगर इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा, कई ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा? तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ चाहें काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किन के साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मुझे मैंने काम किया है ऑलरेडी उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मज़ा आया है सबके साथ काम करने में, और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं तो मैं कह नहीं सकूँगा, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं, वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो जरा रेपिटेटिव हो जाता है।
0: नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ गया।
1: मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
0: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, लॉन्गिंग नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं? चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
1: मूड अच्छा हो जाए, चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता
0: है। ठीक है।
1: तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

अपने परिवार के साथ बेहद खुश और आनंद से होंगी। साथ ही नियमित रूप से सुन ही रही होंगी जानकारी व मनोरंजन से भरपूर आपका अपना प्रोग्राम महिला जगत। बहनों, पहले उद्यम का क्षेत्र केवल मानव पुरुषों के लिए ही आरक्षित था, लेकिन आज का भारत बदल रहा है। आज की नारी अब सिर्फ चार दीवारी तक सीमित नहीं है, वह आसमान छू रही है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है MSME क्षेत्र, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। MSME केवल देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं है, बल्कि यह आज करोड़ों महिलाओं के सपनों को सच करने का माध्यम बन चुका है। एक समय था जब महिलाओं को केवल नौकरी चाहने वालों के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज MSME के दम पर महिलाएं नौकरी देने वाली बन चुकी हैं। बहनों, आज लगभग 2 करोड़ से अधिक छोटे और मध्यम व्यवसायों की कमान महिलाओं के हाथों में हो। चाहे वह गांव की कोई महिला हो जो अचार पापड़ या हस्तशिल्प का उद्योग चला रही है, या शहर की कोई शिक्षित युवती जो एक बुटीक, स्टार्टअप या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभाल रही है, हर स्तर पर महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि MSME से बढ़ रहा है महिला सशक्तिकरण। अगर बहनों आपके पास भी है कोई बिजनेस आइडिया, तो MSME की सहायता से उस सपने को दे साकार रूप, बने बिजनेस वुमेन। इसके साथ अपनी चर्चा को देते हैं यहीं विराम। अब आपको आपके मनोरंजन के लिए सुनवाते हैं एक गीत।

मैनू जानकारी के क्रम में आज हम आपको बताते हैं असम की प्रसिद्ध कार्बी लोक गायिका श्रीमती पोंखिला लैकथेपी के बारे में, जिन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें प्यार से क्वीन ऑफ मेलोडी, सुरों की रानी और पर्वतों की गान कोकिला भी कहा जाता है। यह पिछले 4 दशकों से अधिक समय से असम के कार्बी आंगलोंग जिले से जुड़ी एक सम्मानित लोक और आधुनिक गायिका है। उन्होंने 300 से अधिक गीतों की रचना की है और उन्हें गाया है। मैनो इन्होंने बचपन से ही कार्बी आधुनिक गीतों के लिए खुद के गीतों और बोलों की रचना करना शुरू कर दिया था, जिससे पारंपरिक लोक संगीत को एक नया आधुनिक रूप मिला। इसी तरह बहनो समय समय पर देते रहेंगे हम आपको जानकारी। फिलहाल जानकारी के क्रम को देते हैं यही।

मैनू सितंबर के महीने को आधिकारिक तौर पर स्किन केयर अवेयरनेस मंथ यानी त्वचा की देखभाल के प्रति जागरूकता का महीना माना जाता है। कैसे कर सकते हैं आप अपने स्किन की केयर, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपको सुनवाते हैं त्वचा बाल और सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर उर्वशी गोयल के साथ भेंटवार्ता। विषय है कैसे करें त्वचा और बालों की देखभाल। आज के समय में प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल और बढ़ते तनाव के कारण त्वचा और बालों को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हम अक्सर टीवी या इंटरनेट पर देखकर कई तरह के प्रोडक्ट्स का

0: के समय में प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल और बढ़ते तनाव के कारण त्वचा और बालों को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हम अक्सर टीवी या इंटरनेट पर देखकर कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वे वाकई हमारी स्किन के लिए सही हैं? इसी विषय पर सही और वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अलवर शहर की प्रसिद्ध और अनुभवी त्वचा, बाल और सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर उर्वशी गोयल। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। थैंक यू।
0: हम आपसे बातचीत करें उससे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने इस सफर की शुरुआत कैसे की। अपने सफर के बारे में कुछ बताइए। आपने स्किन और हेयर केयर के फील्ड को ही क्यों चुना?
1: जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने प्रेजेंट करता है तो उसकी अपीयरेंस इम्पोर्टेंट नहीं होती है, जो उसका स्किन और हेयर है वो उसकी पर्सनालिटी और इनर कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। शुरुआती दौर में जब हम MBBS कर रहे थे तो उसके बाद इंटर्नशिप में हमारी पोस्टिंग होती थी, तो मुझे डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट मिला था। वहाँ मैंने देखा कि पेशेंट्स आते हैं और मैक्सिमम पेशेंट का हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करके उसको कॉन्फिडेंस देकर उसको ठीक करते हैं, तो वहीं से बस मेरी शुरुआत हो गई। मैंने ठान लिया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। मेरा शुरू से ये मानना था कि पेशेंट को हम साइंटिफिक तरीके से ठीक करके उसको कॉन्फिडेंस दिला सके। तो इस फील्ड में पेशेंट जो होता है वो अक्सर कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज करने लगता है, कुछ भी लगाने लगता है, तो इसमें एक डॉक्टर का ये रहता है कि वो उसको उसी टाइम पे अगर वो सही तरीके से ट्रीटमेंट करेगा तो उसका पर्सनालिटी लेवल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट अप हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इस फील्ड में डर्मेटोलॉजी मेडिकल साइंस के साथ साथ एस्थेटिक से भी जुड़ी होती है, तो बस यही वजह है कि मैंने इस फील्ड को अपना कैरियर मानते हुए शुरुआत करी।
0: आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हमारी स्किन बहुत हेल्दी होती है, हमारे बाल बहुत स्वस्थ होते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल लोगों में त्वचा और बालों से जुड़ी सबसे कॉमन समस्या जो है वो कौन सी है?
1: जो त्वचा से जुड़ी समस्या है वो कॉमनली पेशेंट्स मुहासे, झाइयां, रिंकल्स आना और खुजली होना, दाद हो जाना, ये हमारी कॉमन समस्याएं हैं। बालों से जुड़ी समस्या जैसे कि बालों में रूसी होना, खुजली होना या फिर बालों का गिरना, समय से पहले सफ़ेद हो जाना, ये हमारी कॉमन समस्याएं देखने को मिल रही है।
0: उर्वशी जी, जब भी हम कहीं पर भी पढ़ते हैं तो हमेशा यही बात सामने आती है कि हमें अपनी स्किन के केयर अपने स्किन के टाइप अनुरूप ही करनी चाहिए। तो हम घर बैठे आसानी से अपनी स्किन का टाइप कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है?
1: इसका सबसे अच्छा तरीका है बेयर फेस टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी माइल्ड क्लींजर से अपने फेस को क्लीन करना है। उसके बाद ना आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाना है, ना सनस्क्रीन अप्लाई करना है, ना ही कोई सिरम अप्लाई करना है। आपको वेट करना है करीब 30 से 60 मिनट तक। फिर आपको ये देखना है कि आपका फेस बहुत ज़्यादा सूखा, ड्राई, खिंचाव तो महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक एरिया जैसे कि नोज़ पे, फोरहेड पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है और बाकी एरिया जैसे कि चीक्स, चिन नॉर्मल है या ड्राई है तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। ऑल ओवर फेस पे अगर आपके बहुत ज़्यादा चमक आ रही है, ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो आपकी स्किन ऑयली स्किन की कैटेगरी में आती है, या फिर आपकी स्किन में ना ही ड्राइनेस है ना ही ऑयल है तो आप नॉर्मल स्किन की कैटेगरी में आते हैं।
0: आपने बता दिया कि हम कैसे अपना स्किन टाइप जान सकते हैं। मैंने अपना स्किन टेस्ट कर लिया और मुझे पता चल गया कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, तो अपनी स्किन के अनुरूप हमें कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए? डेली बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि अपना हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी रहे?
1: इसके लिए हमें बेसिकली 3 स्टेप्स रूल फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें एटलीस्ट 2 बार हमें फेस क्लीन करना चाहिए मॉर्निंग एंड सोते वक्त। मॉर्निंग में आपको पहले कोई भी माइल्ड फेस वॉश से फेस क्लीन करना है, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, देन उसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। सनस्क्रीन 30 SPF मिनिमम होना चाहिए या उससे ऊपर भी अपन ले सकते हैं। फिर हमें रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लींस करना है ताकि जो दिन भर की धूल मिट्टी है, प्रदूषण है, जो भी कॉस्मेटिक्स हमने अप्लाई करे हैं वो अच्छे से रिमूव हो सके, और देन हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। ये हमारे स्किन के बैरियर को बनाने में हेल्प करता है और स्किन को पूरी रात ओवरनाइट हाइड्रेट करता है।
0: उर्वशी जी, आपने जो 3 स्टेप बताए हैं, क्या ये सभी स्किन टाइप के लिए है या अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए?
1: 3 स्टेप्स रूटीन हर स्किन के लिए फॉलो होता है। बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कैसे मॉइस्चराइजर्स, कैसे फेस वॉश आपको यूज करने हैं, तो वो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, बाकी 3 स्टेप्स रूटीन हर स्किन को फॉलो करना चाहिए।
0: कहते हैं कि अगर हमारी स्किन बहुत ऑयली होती है तो पिंपल्स की समस्या होना बहुत ही आम बात होती है। बढ़ती उम्र में या आजकल

0: देखते हैं कि यंग जनरेशन में पिंपल्स की समस्या बहुत आम हो गई है। सभी लड़कियां आजकल इस समस्या को फेस कर रही हैं, तो इससे बचने का क्या उपाय है कि हम ऐसी कौन सी सावधानियां रखें कि हमारी पिंपल्स बहुत कम हो या बहुत जल्दी ये सही हो जाएं?
1: देखिए, पिंपल्स की समस्या आजकल सिर्फ यंग एज में नहीं, मतलब मिडिल एज में भी देखने को मिल रही है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल। तो जैसे कि बढ़ती उम्र में तो हार्मोनल बदलाव होते हैं, पर जैसे और ज़्यादा हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो पीसीओडी की समस्या भी हमें ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो हार्मोनल बदलाव के कारण जो हमारी ग्लैंड्स होती है वो ज़्यादा ऑयल बनाने लगती है, इससे जो हमारी स्किन है उसमें पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं। या फिर आजकल हर कोई बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ट्राई करता रहता है, कभी कुछ लगा रहा है कभी कुछ लगा रहा है, तो उससे हमारे रोम क्षेत्र बंद होने लगते हैं और हमारी स्किन इरिटेट होने लगती है, एक्ने प्रोन होने लगती है। साथ में खान पान, जैसे कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स का सेवन करना, बाहर की चीज़ें खाना, ऑयली प्रोडक्ट्स खाना, बहुत ज़्यादा मीठा लेना, ये सब भी हमारी एक्ने प्रोन, हमारी स्किन को एक्ने प्रोन करता है। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट लास्ट है कि हम चिंता और तनाव, ज़्यादा आजकल स्ट्रेस हमारी लाइफ साइकिल का पार्ट हो गया है, वो भी हमारे स्किन को एक्ने प्रोन करने के लिए जिम्मेदार है।
0: तो क्या घर पर इन पिंपल्स का कुछ इलाज संभव है या हमें डॉक्टर की सलाह ही लेनी चाहिए?
1: अगर आपके बिल्कुल माइल्ड एक्ने हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पस नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, तो आप घर पे अपने फेस को सुबह शाम अच्छे से फेस क्लीन करिए, अपने मोबाइल को क्लीन रखिए, अपने पिलो कवर को क्लीन रखिए, और अपने अपने जो डाइट है उसमें मीठा और चिकना बंद करिए, और अपने डाइट एक्सरसाइज वाला रूटीन फॉलो करिए। इससे काफ़ी हद तक आपके एक्ने में आराम आ जाएगा।
0: आपने बताया कि आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आजकल इंटरनेट पर और टीवी पर हम देखते हैं कि बहुत सारे विज्ञापन आ रहे हैं जो हमारे अंदर भ्रांति पैदा कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट से हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारी झाइयाँ दूर हो जाएगी। बहुत सारे घरेलू उपाय भी उनमें बताए जा रहे हैं, तो क्या ये वाकई कारगर है? इन घरेलू उपायों को हमको करना चाहिए? बहुत सारे घरेलू सामान है, जैसे जायफल का उपयोग हम करें, दालचीनी का करें तो इनसे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, हम मेथी दाना कलौंजी का उपयोग करें तो हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो क्या वाकई ऐसा होता है? ये सभी भ्रांतियाँ ही हैं।
1: देखिए, कुछ जो पुराने नुस्खे हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत असरदार रहते हैं, पर आजकल जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जो हर कोई वीडियो डालने में लगा हुआ है, कुछ भी लगा रहा है और कुछ भी दिखा रहा है, वो हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए हमारी स्किन पे। सबका स्किन अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने दूध और जायफल की बात करी, दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन में एक माइल्ड एक्सफोलिएंट है, और जायफल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, तो ये कुछ हद तक चेहरे पे चमक दे सकता है अगर हम डेली बेसिस पे या वीक में दो बार लगाएं। लेकिन अगर आपके डीपर लेवल पे कोई पिगमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल झाइयां हैं, तो वो इसमें असरदार नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर चिकित्सक की सलाह लेकर ही इलाज करना चाहिए।
0: आप बात कर रही हैं कि हमें बहुत अच्छी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, तो हम कैसे सनस्क्रीन का चुनाव करें और उसका SPF लेवल क्या होना चाहिए, कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट होती है और उसका यूज़ कैसे करना चाहिए?
1: देखिए, सनस्क्रीन जो होती है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है SPF, एक होता है PA फैक्टर। SPF जो होता है वो हमारी इंडियन स्किन के हिसाब से हमें 30 मिनिमम रखना चाहिए, और उससे अबव हम 50 तक जा सकते हैं। अगर ज़्यादा SPF हम बढ़ाएंगे तो वो ऑक्लूसिव होएगी और स्किन के पोर्स को बंद करके मतलब एक्ने आने लगेंगे उससे, या और दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि फेस वाइट वाइट दिखना, क्रीमी ग्रीजी सा दिखना, वो सब चीज़ें हमें दिखने लगेगी। जो SPF होता है ये अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को प्रोटेक्शन देता है, और जो PA फैक्टर होता है वो मिनिमम 3 होना चाहिए, 3 अबव होना चाहिए, ये अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन को प्रोटेक्शन देता है। जो UVB रेडिएशन है वो मेनली सनबर्न, टैनिंग और जो स्किन कैंसर्स हैं उनके लिए रिलेटेड होती है। जो UVA रेडिएशन है वो हमारे चेहरे पे समय से पहले झुर्रियाँ आना, बुढ़ापा आना, स्किन डेली होना, ये कॉलेजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, तो एजिंग प्रोसेस बढ़ाता है। तो हमें दिन में कम से कम 3 बार सनस्क्रीन अप्लाई करना है, हर 3 से 4 घंटे में हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है। सनस्क्रीन 1 फिंगर टिप यूनिट होनी चाहिए जो हमारी को पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर सके हम।
0: अगर हम घर पर ही हैं, बहुत छाया वाले मौसम में रह रहे हैं, तो तब भी हमें 2 से 3 बार सनस्क्रीन का लगाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, या फिर हम धूप में जा रहे हैं तभी हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए?
1: बिल्कुल, आप घर में हैं तब भी आपको सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि घर में भी हमारी बहुत सारे रेडिएशन के सोर्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, इनमें ब्लू लाइट्स होते हैं, गैस जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ट्यूब लाइट्स हो गई, बल्ब्स हो गई, ये सब लाइट के सोर्स हैं, तो ये भी आपके स्किन को कहीं ना कहीं अफेक्ट

0: कर रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन घर में भी लगानी चाहिए।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सनस्क्रीन का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता था कि ये धूप से बचाव कर रही है। अगर हमें धूप में जाना है तो भी हमें सनस्क्रीन लगानी है, लेकिन आपने कहा कि अगर हम घर पर भी हैं तो भी हमें 2 से 3 बार सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। उर्वशी जी, आपसे हम बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, तो हम क्यों ना सुन लें पहले आपकी पसंद का कोई गीत।
0: चलते चलते वहीं कट जाएगा सफर।
1: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, फिर बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे।

0: उर्वशी जी, चलते चलते गीत के बाद हम वापस से चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ और आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अगर हम बढ़ती उम्र में त्वचा और बालों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपने कहा कि उस एज में हार्मोनल चेंज होते हैं इसलिए समस्याएं होना आम है, तो हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या कैसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट लें कि ये समस्याएं हम पर बहुत कम असर करें?
1: देखिए, जो उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में एजिंग प्रोसेस के साथ साथ कोलेजन डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो स्किन लचीली होने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें प्रॉपर डाइट, जिसमें हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन का यूज़ लेना प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे कि दाल, सोयाबीन, पनीर, इन सब का यूज़ करना चाहिए। स्किन डेली हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। स्किन को दो बार तो एटलीस्ट मॉइस्चराइज करना चाहिए। विटामिन सी युक्त हमें भोजन करने, विटामिन सी युक्त हमें फल लेने चाहिए, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, ये सब चीज़ें हमें इंक्लूड करना चाहिए। साथ में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई, जैसे कि अपना अलसी हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये हमें इंक्लूड करना चाहिए। फिर भी आपकी स्किन सही नहीं हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि स्किन में एजिंग साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट की सहायता से आपको अपने जो डेली केयर है, रूटीन है,

0: आपको आपके स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स चुनने के लिए कंसल्ट करना चाहिए।
1: एक बात उर्वशी जी, मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि क्लिनिकल फेशियल और जो हम पार्लर में जाकर फेशियल करवाते हैं, दोनों में क्या अंतर है?
0: देखिए, क्लिनिकल फेशियल या मेडिफेशियल एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है जो कि आपकी डीपर स्किन लेयर पर वर्क कर रहा है, जबकि सैलून फेशियल या पार्लर फेशियल ऊपरी लेवल पे काम करके आपको थोड़ी दिन के लिए चमक दे सकता है। जो मेडिकल ग्रेड फेशियल होता है, इसमें आपको जो स्किन है उसमें जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको टारगेट करते हुए दिया जाता है। इसमें शामिल होते हैं जैसे माइक्रोडर्मा एब्रेशन, केमिकल पील्स, वेम्पायर फेशियल, हाइड्रा फेशियल और कार्बन पील फेशियल्स, जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है उसको टारगेट करते हुए देते हैं ताकि आप डीपर लेवल पे सही हो सकें।
1: तो इनमें से कुछ फेशियल के बारे में आप जरूर हमें बताइए कि हमारे सभी श्रोताओं को बताइए कि कौन सा फेशियल किस समस्या के लिए कारगर होता है, जिससे अगर हमारी किसी बहन को कोई समस्या है तो वो आपसे जरूर संपर्क कर सके।
0: जैसे कि हमारा एजिंग प्रोसेस हो रहा है, हमारी स्किन लूज हो रही है, हमारी स्किन में रिंकल्स ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए होता है वेम्पायर फेशियल, जिसमें हम आप ही का ब्लड आपके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और ऊपर से माइक्रो नीडलिंग किया जाता है। इससे आपकी स्किन में कॉलेजन बूस्टअप करने का एक तरीका होता है, तो जो स्किन होती है वो धीरे धीरे कॉलेजन बिल्डअप करके स्किन को नेचुरल तरीके से हील करती है और आपकी जो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। फिर अपना कार्बन पील फेशियल, ये एक तरह का लेज़र फेशियल होता है जिसमें आपके फेस पे एक कार्बन का मास्क लगाया जाता है। ये कार्बन आपकी जो भी स्किन के रोम छिद्र होते हैं, जो भी ऑयल एक्स्ट्रा बन रहा है उसको खींच लेता है और फिर उस पर लेज़र केयर करी जाती है। तो लेज़र जो होती है उस कार्बन को ड्राई आउट करके बर्न करती जाती है। तो जो भी आपके फेस की गंदगी है, जो टैनिंग है, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो उस फेशियल की हेल्प से हम दूर कर सकते हैं। तो जिसको एक्ने प्रोन स्किन हो रही है, जिसके ओपन पोर्स की समस्या ज़्यादा है या जिसको टैनिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, उसमें कार्बन पील फेशियल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हाइड्रा फेशियल एक तरह से डलनेस और हाइड्रेशन का काम करता है, जिसकी स्किन, जो लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में रह रहे हैं या फिर सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है, जिसको कुछ और सूट नहीं करता है, तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल बेस्ट ऑप्शन होता है। इसमें स्किन को हम हाइड्रेशन के साथ साथ क्लिंजिंग का काम करते हैं, तो ये एक तरह से जो हमारी स्किन है इसमें हाइड्रेट करके हाइलुरोनिक एसिड बढ़ाकर स्किन को इम्प्रूव करता है।
1: हमने त्वचा के बारे में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि गंजापन, बालों का झड़ना बहुत आम समस्या है, तो इन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए, बालों की समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है। आजकल अगर हम देखें तो 15 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनमें सब में हमें देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो हम देखते रहते हैं रोजमर्रा बेसिस पे। किसी का हेयर फॉल हो रहा है, किसी के प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या 18-19 ईयर्स के जो लड़के होते हैं, जो हमारी अगर हम पुरानी पीढ़ी को देखते हैं तो वही चीज़ जो होती है गंजापन, जिसको हम बोलते हैं कि फैमिली पैटर्न बालनेस या मेल पैटर्न बालनेस या फीमेल पैटर्न बालनेस, वो आजकल 18 से 19 साल में हमें देखने को मिल रही है। तो वही चीज़ जो हमारे पूर्वज थे या हमारे जो हमसे जो बड़े हैं वो 30 से 40 साल के बाद फेस कर रहे थे, जो आज हमें इतनी जल्दी उम्र में देखने को मिल रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, या जनरेशन गैप इसको हम कहें तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो गया, स्ट्रेस हो गया, या उनका जो लाइफस्टाइल है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है।
1: उर्वशी जी, आपने जो बालों की समस्याएं बताई कि गंजापन हो रहा है, कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इन समस्याओं का समाधान क्या है?
0: देखिए, सबसे पहले तो हमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो बाल झड़ क्यों रहे हैं, क्यों समय से पहले सफ़ेद बाल आ रहे हैं। जब भी कोई पेशेंट होता है इस तरीके का, वो हमारे पास आता है तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उसका लाइफस्टाइल रूटीन पूछते हैं। अगर कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की कमी रहती है, जैसे कि हम टेस्टिंग कराते हैं, विटामिन B12, विटामिन डी कम है, या कुछ उसके इंटरनल हार्मोनल रीजंस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो हमें रूट कॉज देखते हुए उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसके लिए आजकल अगर हम देखें तो जो कॉमनली दवाइयाँ दी जाती है, बायोटीन, विटामिन D3 या कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो उनकी डिफिशेंसीज निकलती है, साथ साथ थेरेपी भी होती है जिसको हम बोलते हैं PRP थेरेपी, जिसमें हम पेशेंट को उसके जो रूट्स होती है उसको टारगेट करते हुए ग्रोथ थेरेपी देते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट करते हैं, उससे भी जो उसके हेयर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होके काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगते हैं।
1: और मैम, जो कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसके पीछे क्या कारण होता है? हम देखते हैं कि 10-12 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं।
0: जो कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसका बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं, एक सिंगल कॉजिटिव फैक्टर नहीं होता। जैसे कि उसकी फैमिली हिस्ट्री, अगर उसके परिवार में भी सफ़ेद बाल की जल्दी आने

0: केसरी है, या उसके भाई बहन को भी जल्दी आ रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ में बच्चे में विटामिन B12 की कमी होना, उसका घर जो हरी सब्जियां नहीं खाना, वो बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, बार बार शैम्पू चेंज करना बालों मतलब, और हमारा जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेते हैं, पढ़ाई का जिनके लोड ज़्यादा रहता है, उनमें भी तनाव के कारण भी मेलेनिन प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिससे प्री मेच्योर ग्रेइंग या समय से पहले सफ़ेद बाल आने लगते हैं।
1: तो क्या इस समस्या का समाधान संभव है?
0: अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आपका जो रूट कॉज है उसको देखा जाएगा, और अगर आपके कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है तो उसको सही करके जो सफ़ेद बाल हैं उसको अपन रिवर्ट कर सकते हैं।
1: उर्वशी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी समस्याएं हो रही है आपकी त्वचा से, बालों से रिलेटेड, तो आप अपने लेवल पे YouTube और Instagram या किसी के भी कहने पे मत जाइए, वो आपके जो रूट लेवल है उसको ठीक करना ज़रूरी होता है। कितने ही आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेंगे, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, लेकिन वो आपको जब तक रूट कॉज आपका ठीक नहीं होगा तब तक आप सही नहीं हो सकते। तो इसके लिए पहले आप अपने आप को समझिए कि आपको क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और फिर उसका सही तरीके से इलाज कराइए।
1: आप हमारे स्टूडियो में आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: अभी आप सुन रही थी डॉक्टर उर्वशी गोयल के साथ भेंट वार्ता। विषय था कैसे करें त्वचा व बालों की देखभाल। मैंने जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती फूल और पत्तों पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। इसलिए अच्छे विचार अपनाएं और दूसरों के साथ करें अच्छा व्यवहार। जिंदगी के इसी फलसफे के साथ दीजिए अपनी रेडियो सखी शिल्पा को जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: अभी मैंने अपना कार्यक्रम महिला जगत सुन रही थी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम।

मैं हूं आपकी अपनी आर्जे कनिका और आप सुन रहे हैं आपका आकाशवाणी अलवर का फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। दोस्तों, आज की शुरुआत में मैं एक बहुत खूबसूरत बात आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे सामने हमारी बुराइयां जो बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। जरा

कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे सामने हमारी तारीफ तो कर देते हैं, लेकिन जब हम अपनी किसी कमी का एहसास कराने की बात उनसे कहते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। शायद ऐसे लोग आपको याद आ ही गए होंगे, क्योंकि हमारी अच्छाइयाँ बताना आसान है, लेकिन हमारी कमियाँ बताना और फिर भी हमारे साथ खड़े रहना, यह सच्ची दोस्ती की पहचान है। दोस्तों, हम सभी को अपने बारे में अच्छी बातें सुनना पसंद होता है। कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा किया, या तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो, तो मन देखिए झटपट खुश हो जाता है। लेकिन अगर कोई अपना ही व्यक्ति सामने से कह दे, देखो यहाँ तुम गलत हो, तुम्हें इस आदत पर काम करना चाहिए, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? शायद हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है ना? हम कह देते हैं कि तुम मुझे समझते ही नहीं हो, या फिर हमारे मन में आता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले। लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए दोस्तों, क्या हर क्रिटिसिज्म दुश्मनी होती है? बिल्कुल नहीं। कई बार किसी अपने की कही हुई बात कड़वी ही हो, लेकिन वो हमारे लिए आईना होती है, जिसे हम खुद से देखने में बच रहे होते हैं और वो हमें दिखा देते हैं। युवावस्था में तो दोस्ती हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। हम अपनी बातें, अपने सपने, अपनी परेशानियाँ और कभी कभी अपनी गलतियाँ भी दोस्तों के साथ साझा करते हैं। लेकिन सच्चा दोस्त वह नहीं जो हर बात पर बस कह दे कि हाँ तू सही है, हाँ तू सही है, सही है, बिल्कुल तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, बल्कि सच्चा दोस्त वो है जो ज़रूरत पड़ने पर कह सके नहीं, इस बार तुम सही नहीं हो, और उससे भी बड़ी बात है कि वह आपकी गलती बताकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको बेहतर बनने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क भी है दोस्तों, सच्चाई बताने और अपमान करने में अंतर होता है। जो व्यक्ति आपकी कमी बताकर आपको शर्मिंदा करे, दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती करे, या हर समय आपकी कमियाँ ही गिनाता रहे, वह ज़रूरी नहीं कि आपका सच्चा मित्र हो। सच्चा मित्र आपकी गरिमा का सम्मान करते हुए आपको आपकी गलतियाँ समझाता है, वो कहता है कि तुम में कमी है, नहीं बल्कि वो ऐसे कहता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। यही फ़र्क है रिश्ते की नीयत बताने वाला। तो दोस्तों, आज आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जो आपके सामने आपकी गलतियां बताने की हिम्मत रखता है? अगर है तो शायद आज उसे एक बार दिल से धन्यवाद कहने का दिन है, और अगर नहीं है तो शायद हमें खुद भी सोचना चाहिए कि क्या हम दूसरों के लिए वैसे दोस्त बन पा रहे हैं, क्योंकि सच्चा मित्र पाने से पहले बनना भी तो ज़रूरी है ना। और दोस्तों, एक और खूबसूरत बात, किसी की कही हुई बात को स्वीकार करना भी एक गुण है। अगर कोई हमारी कमी बताता है तो तुरंत डिफेंसिव होने के बजाय एक बार आप खुद से ज़रा पूछिए, क्या इसमें थोड़ी भी सच्चाई है? अगर जवाब हाँ है तो उस बात को अपनी कमजोरी ना समझें, अपनी ग्रोथ का मौका समझिए। आखिरकार जो व्यक्ति हमें हमारी गलतियाँ दिखाता है, वह हमारे व्यक्तित्व को छोटा नहीं करता, बल्कि हमें अपने बेहतर रूप तक पहुँचने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, आज युववाणी से बस इतनी सी बात याद रखिए, तालियां बजाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आईना दिखाने वाले बहुत कम। जो व्यक्ति आपकी सफलता पर खुश हो और आपकी गलती पर आपको रोक सके, आपकी कमियों पर आपको सुधार सके और फिर भी आपका सम्मान बनाए रखे, ऐसे रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर कड़वी बात बुरी नहीं होती। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसे मित्र बनाइए जो आपको खुश रखने के साथ साथ बेहतर इंसान बनने में भी मदद करे, और जब कोई आपका अपना आपको कमी दिखाए तो पहले नाराज़ होने से पहले धन्यवाद कहकर देखिए, हो सकता है वही व्यक्ति आपके जीवन का सबसे सच्चा आईना हो। तो आइए चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

आप दोस्तों के साथ बैठे हों, चारों तरफ लोग हों, और तभी अचानक ओ फिर मच्छर ने काट लिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक ही जगह पर 5 लोग बैठे हो लेकिन मच्छर जैसे सिर्फ आपको ही अपना पसंदीदा इंसान समझ रहे हो? आप हाथ से उन्हें भगाते रहे और बगल में बैठा दोस्त बड़े आराम से बैठा रहे, तब मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर मच्छर मुझे ही क्यों काटते हैं? क्या इन मच्छरों की भी कोई पसंद नापसंद होती है? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ आपकी किस्मत या मच्छरों की मनमानी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए बकायदा प्रयोग किए हैं। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, मच्छर अपने शिकार तक पहुंचने के लिए सिर्फ गंध का सहारा नहीं लेते, बल्कि उनकी नज़र भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी मच्छर आपको खोजने के लिए एक तरह से सूंघने और देखने दोनों सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। अब सवाल है कि मच्छर को कैसे पता चलता है कि आसपास इंसान मौजूद हैं? दोस्तों, इसका एक बड़ा संकेत है हमारी सांस। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकलती है। मच्छर इस संकेत को महसूस कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार CO2 मिलने के बाद मादा एड्स एगिप्टी मच्छरों की खोजने की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे मच्छर के लिए किसी ने छोटा सा अलार्म बजा दिया हो कि आसपास भोजन मौजूद है, अब ध्यान से देखो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। CO2 का संकेत मिलने के बाद मच्छर सिर्फ हवा में भटकते नहीं रहते। शोध में पाया गया कि वे कुछ सांस खास लंबी तरंग दैर्ध्य वाली किरणों रंगों जैसे लाल और नारंगी की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। वहीं हरा, नीला, बैंगनी और सफ़ेद जैसे रंगों की ओर उनका आकर्षण इस प्रयोग की परिस्थितियों में कम देखा गया है। तो आप सोचिए कि आपकी सांस से निकली CO2 ने मच्छर को सक्रिय किया और उसके बाद उसकी आंखें आसपास के दृश्य संकेतों को तलाशने लगी। यानी मच्छर के लिए हमारी सांस एक तरह का खोज शुरू करो संकेत और दृश्य संकेत आगे की दिशा तय करने में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे रोचक सवाल आता है, लाल और नारंगी ही क्यों? वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानी त्वचा से मच्छरों को लाल नारंगी जैसी लंबी तरंग दैर्ध्य वाली दृश्य सूचना मिल सकती है। इसलिए त्वचा उनके लिए एक महत्वपूर्ण विजुअल क्यू बन सकती है। यानी हमारी त्वचा का रंग चाहे जैसा भी हो, मच्छर को उससे मिलने वाला दृश्य संकेत उसके लिए आकर्षण का हिस्सा बन सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम सोचते हैं कि मच्छर सिर्फ हमें सूंघकर ढूंढते हैं, लेकिन उनकी दुनिया में देखने का भी अपना एक कलर कोड हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक खास हवा की सुरंग में मच्छरों की गतिविधियों का अध्ययन किया और कैमरों की मदद से उनकी उड़ान और प्रतिक्रिया को ट्रैक किया। प्रयोगों में जब इंसानी त्वचा से मिलने वाले लाल नारंगी दृश्य संकेत को छिपाया गया तो मच्छरों का इंसानी लक्ष्य की ओर आकर्षण कम हो गया। इसी तरह जिन मच्छरों में CO2 को महसूस करने या कुछ दृश्य संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रभावित थी, उन्होंने इंसानी लक्ष्य की ओर वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि मच्छर का इंसान तक पहुंचना केवल एक कारण पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई सेंसरी सिग्नल मिलकर उसकी खोज को प्रभावित करते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि पूरे कमरे में सिर्फ आपको ही मच्छर परेशान कर

में है तो तुरंत अपने दोस्त पर शक मत कीजिए कि उसने मच्छरों को आपका नाम बता दिया है। इसके पीछे आपकी सांस से निकलने वाली CO2, शरीर की गंध, गर्मी और आसपास के दृश्य संकेत जैसे कई फैक्टर्स भूमिका निभा सकते हैं। और हाँ, सिर्फ कपड़ों का रंग बदल लेने से मच्छरों से पूरी तरह बचाव की गारंटी नहीं मिलती, इसलिए मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी, रिप्लेंट और आसपास पानी जमा न होने देना जैसे भरोसेमंद उपाय ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वैज्ञानिक यात्रा से एक बात तो साफ है, मच्छर जितना छोटा है उसकी सेंसिंग सिस्टम की कहानी उतनी ही दिलचस्प है। अगली बार जब कोई कहे कि यार मच्छर मुझे ही क्यों काटते हैं, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं कि भाई बात सिर्फ खून की नहीं, तुम्हारी सांस और आसपास के विजुअल सिग्नल्स की भी है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आज मंगलवार है और आज हम सुनेंगे आपके पसंदीदा थीम सॉन्ग्स। लेकिन दोस्तों, गाने के इस खूबसूरत सफर पर चलने से पहले क्यों ना कल के खास पर्व से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जान ली जाए। जैसे कि आप जानते हैं, कल थी गणेश चतुर्थी। घर घर में गणपति बप्पा की स्थापना हुई, पूजा हुई, मोदक का भोग लगा और चारों ओर एक ही जयकारा सुनाई दिया, गणपति बप्पा मोरया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा के पीछे केवल धार्मिक आस्था ही है या इसके पीछे हमारे पूर्वजों की कोई प्रैक्टिकल सोच भी छुपी हुई है? सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक मान्यता की। सनातन परंपरा में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी का स्मरण करने की परंपरा है। उन्हें विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला और बुद्धि, विवेक तथा शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में गणेश जी के जन्म और उनके स्वरूप से जुड़ी अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन इन कथाओं के पीछे छिपे संदेश भी बेहद खूबसूरत है कि किसी भी नए काम से पहले केवल उत्साह ही नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय भी जरूरी है। और अब जरा गणेश जी के स्वरूप को ही देखिए, उनका बड़ा सिर हमें बड़ी सोच रखने की सीख देता है। बड़े कान कहते हैं कि पहले सुनना सीखिए और फिर बोलिए। छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक मानी जाती हैं, जबकि उनका बड़ा पेट जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक संभालने का संदेश देता है। उनका वाहन मूषक यानी चूहा भी अपने आप में एक रोचक प्रतीक है। मन की चंचल इच्छाओं और बेचैनी पर नियंत्रण रखने का संदेश यानी गणेश जी की कृपा का पूरा स्वरूप जैसे कहता है, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, धैर्य रखिए और अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो आज की हमारी थीम यही है, आइए सुनते हैं पहला संगीत।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: दोस्तों, अब आते हैं गणेश चतुर्थी के एक और दिलचस्प पहलू पर, मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाना और फिर उसका विसर्जन करना। पारंपरिक रूप से गणेश प्रतिमा के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता रहा है। इसमें एक गहरा संदेश छिपा है, जिस प्रकृति से हमारा निर्माण हुआ है अंततः उसी प्रकृति में हमारा विलय होना है। गणेश जी की स्थापना हमें उत्सव और सकारात्मकता देती है, जबकि विसर्जन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है। मिलना है तो बिछड़ना भी है, निर्माण है तो परिवर्तन भी है। यही प्रकृति का नियम है।

तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी सिर्फ गणपति बप्पा के स्वागत का पर्व नहीं है, यह जैसे हर साल हमारे जीवन में एक छोटा सा रिमाइंडर लेके आती है, नई शुरुआत करो लेकिन बुद्धि के साथ। मुश्किलें आए तो धैर्य रखो, सफलता मिले तो विनम्र रहो, और जीवन में जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो। शायद इसीलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया, क्योंकि किसी भी शुभ यात्रा की पहली सीढ़ी ही है सही सोच और विवेक। तो चलिए दोस्तों, गणपति पप्पा से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से अज्ञान और अहंकार के विघ्न दूर हों, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, और हम अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशियों का भी कारण बने। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युगवाणी प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत आपकी हौसन दोस्त आरजे कनिका को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार के पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र

0: क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक, कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए अब आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा के शेष रहे और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के।

श्रोताओं, आपसे बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत 6:10 से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:30, उसके बाद जिले की चिट्ठी, और 6:45 पर सुनिए राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 7:00 किसान भाइयों के लिए किसान वाणी कार्यक्रम होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर। 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत में कानागीर और साथियों के गाय लोक की। 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या। 9:00 अंग्रेजी में समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम जिन्हें हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। ग्यारह बजे हिंदी में समाचार

कल की हमारी सभा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी में समाचारों के साथ। 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंधनवार होगा। जरोगा में कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे कल सुबह 6:30 पर। 6:35 पर सुनिए रामचरितमानस गान। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता 6:45 पर सुनिए। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कल नमस्कार अलवर कार्यक्रम। 7:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

रामचरितमानस का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता 6:45 पर सुनिए। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कल नमस्कार अलवर कार्यक्रम। 7:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। कल सुबह 8 बजे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे। 8:15 पर सुनिए सुगम संगीत में गजलें। 8:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा कल सुबह 9 बजे, दिन में 1 बजे और शाम 6:30 पर। नौ बजकर 10 मिनट से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। अंग्रेजी के समाचार दोपहर 2 बजे और हिंदी में समाचार 2:15 पर हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 2:30 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। कल शाम 8 बजे आप सुनेंगे जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत, जिसे हम दिल्ली के केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज की सभा के शेष रहे और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का विवरण।

और अगला गीत आपको सुनवा रहे अरिजीत सिंह की आवाज, जीत गांगुली का संगीत, रश्मि विराग की बोल, फिल्म राज रिपोर्ट।

शुदा जहर फिल्म का गीत आपने सुना आतिफ असलम की आवाज में। और ये अगला गीत आपको सुनवा रहे अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि विराग के बोल, जीत गांगुली का संगीत, हमारी अधूरी कहानी फिल्म का गीत।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आप सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं प्रतीक्षक।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान सहित छह राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने न्याय शांति और विकास के प्रति समर्पण को लोकतंत्र का बड़ा आधार बताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में डीआरडीओ और उद्योग जगत के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान सहित छह राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। किशाऊ परियोजना यमुना की प्रमुख सहायक टोंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा को इसका लाभ मिलेगा। परियोजना से राजस्थान को 124 एमसीएम पानी आवंटित होगा, जिसे हरियाणा के हांसी वासी से चूरू तक भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने की योजना है। इससे सीकर, चूरू और झुंझुनू सहित शेखावाटी क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों की सहमति से दशकों से अटकी परियोजनाओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने समझौते को राज्यों के

0: आपसी सहयोग की मिसाल बताया।
1: मित्रों, हम कह सकते हैं जो दशकों से अटके हुए ऐसे विवाद थे जो सरकार सोचना भी नहीं चाहती थी। क्या आज उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच आज ये किसानों का समझौता इन छह राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। और हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन छह राज्यों में प्रगति की मिसाल भी बनेगी। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण संबंधी लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास विभाग की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए लॉटरी निकालने के लिए 17 सितम्बर तारीख तय की गई थी। वहीं सरपंच और वार्ड पंच के लिए लॉटरी निकालने के लिए तारीख 18 सितंबर रखी गई थी। विभाग के उप शासन सचिव जसवंत की ओर से आज सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर इन तिथियों पर लॉटरी निकालने के लिए काम को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि नगरीय निकायों के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में जिला स्तरीय अधिकारियों के व्यस्त रहने के कारण ये निर्णय किया गया है। विभाग की ओर से आरक्षण लॉटरी निकालने के लिए नई तारीखों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों को अलग से अवगत कराया जाएगा। राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में 25 सितंबर से आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और सहयोगिनियों का सम्मान किया जाएगा तथा बच्चों के लिए पेंटिंग, खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियां होंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग की बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को लेकर संवाद आयोजित करने तथा इस क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश और बच्चों द्वारा तैयार पुस्तक भी आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने तथा इन सेवाओं की पहुंच तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और यूनिसेफ के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। यूनिसेफ इंडिया के उप प्रतिनिधि जेस्पर मॉलर ने आज जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर से मुलाकात के दौरान इस संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित और संवेदनशील वर्गों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने तथा नवाचारों को बड़े स्तर पर लागू करने पर जोर दिया गया। श्री मोलर ने प्री सर्विस मेडिकल एजुकेशन में बाल अधिकारों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि सबके लिए न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। श्री बागड़े ने ये बात आज जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में भारतीय युवा संसद के 31वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र संवाद और लोगों में विश्वास पैदा करने से मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा में मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव मुख्य बिंदु हैं।
2: एक स्थायी मॉडल नहीं है, हो सकता हालांकि मैं सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार भी है और सभी का सम्मान और निष्पक्ष चुनाव, ऐसा सभी देश ने अपने अपने लोकतंत्र की जो परिभाषा की है उसमें रखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डीआरडीओ और उद्योग जगत के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने आज ये बात नई दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने मिसाइल, रडार, लड़ाकू

0: लड़ाकू विमान, पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता साबित की है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित ड्रोनाथॉन 2026 का आज दूसरा दिन है। तीन दिन के इस आयोजन का उद्देश्य मानव रहित प्रणाली उद्योग के साथ सीधे संवाद और वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में स्वदेशी तकनीकों की क्षमता का आकलन करना है। ड्रोनाथॉन में देश के मानव रहित प्रणाली क्षेत्र से जुड़ी 20 से अधिक रक्षा कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमई, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और नवोन्मेषक हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे पर देश के सभी इंजीनियरों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महान इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंजीनियर बेहतर भविष्य के निर्माण, नवाचार और समाधान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सर एम विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग प्रतिभा और राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि आज भी सभी को प्रेरित करती है।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
0: प्रदेश में इंजीनियर्स डे पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर में अभियंता फोरम की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। पाली में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं रखी गईं। लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में एक विशेष स्वच्छता अभियान के तहत ऑनलाइन वेब पोर्टल शुरू करेंगे। इस पोर्टल के जरिए 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले विशेष अभियान की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये 6th विशेष स्वच्छता अभियान है। इसमें नागरिकों से जुड़ी गतिविधियों और अच्छी कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के साथ ई वेस्ट के संग्रह, उसे अलग करने और उचित निपटारे पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत विभिन्न स्कूलों में आज विधिक जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में आज पाली के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विक्रम सिंह भाटी ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की जानकारी दी। उन्होंने बाल तस्करी, अपहरण और मानव तस्करी से जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा किशोर न्याय अधिनियम के बारे में भी बताया। वहीं सवाई माधोपुर में स्कूलों में शिविर लगाकर न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए URATPG के दूसरे चरण के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी अब कल शाम 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी 17 सितंबर तक जमा की जा सकेगी। विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा संयोजक डॉ. नीकी चतुर्वेदी ने बताया कि विद्यार्थियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण को लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में डीआरडीओ और उद्योग जगत के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं चिंतन जोशी। अरावली पहाड़ियों की गोद में सोम और माही नदियों के पास बसे डूंगरपुर जिले में बीते दिनों कई गतिविधियां हुई। जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे निकाय चुनाव और परिणाम की, गणेशोत्सव और जन्माष्टमी की, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और बाल विवाह रोकथाम के लिए चलाई जा रही जन जागृति मुहिम की। साथ ही बात करेंगे विकसित भारत जन सेवा अभियान की। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले डूंगरपुर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव की बात करते हैं। डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में से 24 में भाजपा ने जीत दर्ज की। पार्टी के दो प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं कांग्रेस ने 12 और बीएपी ने 3 तथा 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। यहां पहले चरण के तहत 9 सितंबर को मतदान हुआ। वहीं सागवाड़ा नगर पालिका में दूसरे चरण के तहत 11 सितंबर को वोट डाले गए। यहां 35 वार्डों के लिए लोगों ने मतदान किया। इसमें 23 में भाजपा ने जीत दर्ज की। 8 वार्डों में कांग्रेस और 4 में बीएपी विजयी रही। डूंगरपुर नगर परिषद में लगातार 8वीं बार भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में पिछले दिनों जल और स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। जल जीवन मिशन के तहत हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर ने की। इस दौरान हर घर नल कनेक्शन और अन्य कामों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ ने कहा कि जिन गांवों में हर घर जल का काम पूरा हो चुका है उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। साथ ही इसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाए। श्री राठौड़ ने अधिकारियों को जल सेवा आकलन के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिले में विकसित भारत जन सेवा अभियान की तैयारियां की जा रही है। 17 सितंबर से शुरू होकर ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। अभियान के तहत जन सेवा से जुड़े अनेक कार्यक्रम रखे जाएंगे। इनमें रक्तदान शिविर, शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रेरणादायी वीडियो प्रदर्शन के अलावा रैलियां भी होंगी। साथ ही आशा सहयोगिनियों और आंगन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और श्रमदान तथा सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हुए इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दी गई। इस मौके पर निबंध प्रतियोगिता भी रखी गई। इसमें मनीष यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया, अरुण कुमार रोथ दूसरे और हिमांक चौबीसा तीसरे स्थान पर रहे। जिले के बिच्छीवाड़ा क्षेत्र के रातापानी में पिछले दिनों एक पेड़ मां यशोदा के नाम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी सचिव और आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने की। इस मौके पर उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 25 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाए। महिला अधिकारिता और समेकित बाल विकास विभाग ने पिछले दिनों डूंगरपुर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। कालीबाई भील उड़ान योजना के सुचारू संचालन के लिए ये शिविर रखा गया। इस दौरान महिला पर्यवेक्षकों को संबंधित पोर्टल के बारे में बताया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने उन्हें पोर्टल की कार्यप्रणाली का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों डूंगरपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट के बारे में बताया। अधिकारियों ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर चयनित टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। शीर्ष टीमें जिला और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को जिले में कई कार्यक्रम हुए। विभिन्न विद्यालयों में सम्मान समारोह रखे गए। बीलड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता हुई। बाल विवाह की रोकथाम में शिक्षकों की भूमिका विषय पर हुई इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमाओं को विराजित किया गया। विभिन्न गणेश मंदिरों और पंडालों में गणेश स्तुति हुई। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। राजस्थान समेत 6 राज्यों बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली में करार माथे सही करी जी। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण री लॉटरी, नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी भिया पाछा निकाली जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े न्याय शांति और विकास रा प्रति समर्पण ने लोकतंत्र री मोटी बुनियाद बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो DRDO और उद्योग जगत बीचे भागीदारी री देश ने रक्षा विनिर्माण रो वैश्विक केंद्र बनावन माए खास भूमिका। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राजस्थान समेत 6 राज्यों बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली में करार माथे सही करी जी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह री सदारत में हुई मीटिंग में जलशक्ति मंत्री CR पाटिल और 6 राज्यों रा मुख्यमंत्री करार माथे सही कीनी। किशाऊ परियोजना यमुना नदी री खास सहायक टॉस नदी माथे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश री सरहद माथे प्रस्तावित है। करीब 15,000 करोड़ रुपया रा खर्च री इन परियोजनाओं 660 मेगावाट बिजली बनाई जावेला, जिनरो राजस्थान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने फायदो मिलेला। परियोजनाओं राजस्थान ने 124 MCM पानी मिलेला, जिनने हरियाणा रा हांसीवासियों राजस्थान रा चूरू ताई जमी हेठ पाइप लेन रे जरिए पुगावन री योजना है। इनु सीकर चूरू और झुंझुनू समेत शेखावाटी हल्का माय पीवन और पाणत सारू पानी री जरूरत पूरी करण माय मदद मिलेला। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माय राज्यां री सहमतियों कई बरसों अटक्योड़ी परियोजनावां रा काम फेरिया है। वे ई करार ने राज्यां रा आपसी सहयोग री मिसाल बतायो।
1: मित्रों, हम कह सकते हैं जो दशकों से अटके हुए ऐसे विवाद थे जो सरकार सोचना भी नहीं चाहती थी, क्या आज उत्तराखंड हिमाचल हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान और दिल्ली के बीच आज ये किसानों का समझौता इन 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। और हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन 6 राज्यों में प्रगति की मिसाल भी बनेगी। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता।
0: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण जुड़ी लॉटरी निकाल बारो काम अब नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी फिया पाछा करियो जावेला। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास विभाग री ओर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों सारू लॉटरी निकाल बारी तारीख 17 सितंबर और सरपंच और वार्ड पंच सारू लॉटरी री तारीख 18 सितंबर तय करी ची ही। विभाग रा उप शासन सचिव जसवंत री ओर आज सगला जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कागज लेकर 8 तिथियां माथे लॉटरी नी निकाल बारा हुक्म दिया जिया। इन बीच राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव रा तहत कुछ मतदान केंद्र माथे EVM माय तकनीकी खराबी रा कारण ओजू वोट करावन रा हुक्म दीना है। वोट काल समारा 7 से 6 बजे ताई पड़ेला। वोटा की गिनती 17 सितंबर न करी जावेला। प्रदेश माय मायड़ा नुआ जन्मिया टाबर टाबरिया बच्चा और किशोराओं जुड़ी स्वास्थ्य सेवावां ने और मजबूत बनावन सारू यूनिसेफ इंडिया रा उप प्रतिनिधि जैस्पर मोलर और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बीच आज जयपुर माय बातचीत हुई। मीटिंग माय स्वास्थ्य सेवावां ने बेहतर तरीकाओं जनता ताई पुगावण और नवाचारा ने मोटा पैमाना माथे लागू करण जुड़ी बातचीत करी जी। श्री मोलर प्री सर्विस मेडिकल एजुकेशन माय बच्चा रा अधिकारा री जानकारी शामिल करण सारू कहो, जी पाछे प्रमुख शासन सचिव श्रीमती राठौड़ यूनिसेफ हूं इबारा माय विगतवार जानकारी देवन री अरज कीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंजीनियर्स डे रे मौके देश रा सगला इंजीनियरा ने शुभकामनावां दीनी है। वे महा

0: इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया ने सिरधा भाव सागर यादकर्ता थका कहो के इंजीनियर बेहतर भविष्य सारू निर्माण नवाचार और समाधान मुहैया करावन माय खास काम करे है। प्रधानमंत्री कहो के सर एम विश्वेश्वरैया री इंजीनियरिंग प्रतिभा देश बनावन री दूर दृष्टि सगला ने सीख देवे है।
1: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।
2: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता
0: है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो है कि सगला सारू न्याय शांति विकास और मानवाधिकार प्रति समर्पण लोकतंत्र री सब मजबूत बुनियाद है। वे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस रे मौके आज जयपुर माय राखी जया भारतीय युवा संसद रा 31वां अधिवेशन माय बोल रहा है। श्री बागड़े नौजवानों लोकतंत्र ने मजबूत बनावन रा काम माय सक्रिय भूमिका निभावन सारू कहो। वे कहो के बातचीत और जनता माय भरोसा पैदा करनो लोकतंत्र मजबूत बने है। राज्यपाल नौजवानों लोकतंत्र रा पहरेदार रा तौर काम करन बाबत कहो। श्री बागड़े कहो के लोकतंत्र री परिभाषा माय मानवाधिकार व्यक्तिगत आजादी और निपक्ष चुनाव खास बिंदु है।
3: एक सही मॉडल नहीं है, हो सकता है कि मैं सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार भी है और सभी का सम्मान और निष्पक्ष चुनाव, ऐसा सभी देश में अपने अपने लोकतंत्र की जो परिभाषा की है उसमें रखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और उद्योग जगत बीचे भागीदारी भारत ने हिफाजत जुड़िया साजो सामान बनावन रो वैश्विक केंद्र बनावन माय खास काम कर सके है। श्री सिंह आज नई दिल्ली माय DRDO इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 माय बोल रहा है। वे कहो कि DRDO मिसाइल राडार लड़ाकू विमान पनडुब्बियां और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां सागे कृत्रिम बुद्धिमता AI रा हल्का मा एक क्षमता साबित कीनी है।
4: EDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। IDEX ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च डिजाइन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: जैसलमेर री पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना री ओर रखा जा रहा ड्रोनथॉन 2026 कार्यक्रम रो आज दूजो दिन हो। तीन दिन रा ई आयोजन रो मकसद असली परिचालन हालात में देशी तकनीकान अबूता री पिछाण करनू है। ड्रोनथॉन में देश रा मानव रहित प्रणाली हलकाओं जुड़ी 20-32 रक्षा कंपनियां स्टार्टअप और MSME समेत न्यारा न्यारा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र रा उपक्रम शामिल फेरिया है। प्रदेश में चलाया जा रहा ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे कार्यक्रम रा तहत पाली री न्यारी न्यारी स्कूला में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखी गया। पालीरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव विक्रम सिंह भाटी विद्यार्थियों ने बाल अधिकार साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया रा बेजा इस्तेमाल रे बारा में जानकारी दीनी। सवाई माधोपुर में आई स्कूल में शिविर लगार न्यायिक अधिकारी बच्चों ने मारा कानूनी हक री जानकारी दीनी। राजस्थान विश्वविद्यालय में न्यारा न्यारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला सारू URATPG रा दूजा दौर में अर्जी देवन री आखिरी तारीख बधा दे रही है। विद्यार्थी अब काल सिंजा 4 बजे ताई ऑनलाइन तरीकों अर्जी दे सके है। अर्जी

0: कागज 17 सितंबर ताई जमा करायो जा सकेला। विश्वविद्यालय री प्रवेश परीक्षा संयोजक डॉक्टर निकी चतुर्वेदी बतायो कि मेरिट रा आधारू दाखिला वाला कोर्स सारुई अर्जी देवन री आखरी तारीख काल ताई बधा दे रीची है। स्नातकोत्तर विभाग माई दाखिला री पहली लिस्ट 23 सितंबर न जारी करी जावेला। राज्य में 17 सितंबर विकसित भारत जनसेवा अभियान चलायो जावेला। 17 अक्टूबर ताई चालन वाला ई अभियान रा तहत जनतारी भागीदारी रे जरिए विकसित भारत बनावन रा संकल्प में आगे बढ़ावन रा मकसद न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जावेला। जैसलमेर री जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल आज अहलकारा सागे मीटिंग कर अभियान रे दौरान करया जावन वाला कामा रो जायजो लीनो और जरूरी व्यवस्थावां टेम सर पूरी करन रा हुकम दीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करया जावन वाला ई कार्यक्रम रे 138वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 25 सितंबर ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। राजस्थान समेत 6 राज्यों बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली माय करार माथे सही करी ची। प्रदेश माय पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण री लॉटरी नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी भिया पाछे निकाली जावेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े न्याय शांति और विकास रा प्रति समर्पण ने लोकतंत्र री मोटी बुनियाद बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो DRDO और उद्योग जगत बीच भागीदारी री देश ने रक्षा विनिर्माण रो वैश्विक केंद्र बनावन माय खास भूमिका। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली चिकाया, करे जो मेहनत कदेला लक्ष्मी न आया। बैठ टूटी झोपड़ में भी हो वह कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाला सगड़ा काश्तकार भाई बहना ने चंचल रो नेह भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगड़ा बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भाईली बुआ सब ने

0: ढोगरा जैसा और मनस्वनी आपने भी घने मानू राम राम सा।
1: खूब खूब राम राम चंचल बहन। और आपने किसानवाणी कार्यक्रम ने सुनबड़ा सगड़ा हेतालु श्रोता गणा ने काश्तकार भयार बहना ने मनस्वनी रो स्नेह भरो राम राम सा।
0: देखो आपा किसानवाणी तो कर ही रहा हाँ, और काश्तकार जो है कोई भी देश को हो वे वो भी देश की रीड हो वे है, क्योंकि अगर किसान नहीं हो वे लो अन्न नहीं उपजे लो तो जो जनता है वह खावे ली गई। तो यह बात तो है ही है, लेकिन बीके सागे सागे ही जद तकनीकी को युग वे और निरंतर बढ़वा की आगे जाबा की और जो आविष्कार करबा की नई नई जुगत लगाबा की नई नई खोज करबा की और नया नया संसाधन बनाबा की बात आवे है तो बीके भी आपाने सम्मान करनो चाहिए। जियान की आज को जो दिन है विशेष तौर 15 सितंबर और ई दिन आपा मनावा हाँ राष्ट्रीय स्तर पर अभियांत्रिकी दिवस। और अभियांत्रिकी दिवस यानी जो इंजीनियर को दिन आपा कह सका हाँ। अब आजकल तो भात भात का इंजीनियर हुआ लाग गया साहब है, कि कोई तो कंप्यूटर का इंजीनियर है तो कोई बिजली का है तो कोई मशीना का है तो कोई इमारत बनावा का है, भात भात का इंजीनियर है। पर मोटा तौर पर यो जो दिन है यो समर्पित है अपना जो एक बहुत ही बढ़िया अभियांत्रिकी या अभियंता जो हुआ है मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरिया बा को जन्मदिन आज के दिन आवे हो। और 15 सितंबर 1861 में जन्मया और आको जो योगदान है वो यो है कृष्ण राज सागर बांध जो हैदराबाद शहर में बाढ़ सुरक्षा के ताई बनायो गयो भी परियोजना में ए बहुत ही महती भूमिका निभाया।
1: और आपना इंजीनियर यानी कि आपना अभियांत्रिका केवल मशीन भवन या सड़क बना बड़ा विशेषज्ञ कोनी होवे सा, बल्कि वे समस्याओं रा वैज्ञानिक समाधान खोज और देश ने विकास की गति दे बड़ा आपना राष्ट्र निर्माता भी है।
0: ई हिसाब से तो जो माया होवे ना वे भी बड़ी बढ़िया सी इंजीनियर मानी जा सके, क्योंकि वे भी राष्ट्र निर्माण के ताई जो मजबूत इरादाड़ा सैनिक बनावे है नागरिक बनावे है और जो जूना जूना खेतरा में जाए चाहे कोई डॉक्टर बने चाहे कोई काश्तकार बने कोई व्यापारी बने तो वे सब सफल हुए, लेकिन बाकी पीछे भी जो जो शिल्पकार हुए है जो इंजीनियर हुए वह माँ हुए है।
1: बिल्कुल सा, और वाके ही पीछे आज आपनो देश आधुनिक अति बढ़िया तरक्की कर रहे है, बिजली परिवहन संचार जल प्रबंधन चिकित्सा उपकरण अंतरिक्ष तकनीक डिजिटल तकनीक और औद्योगिक विकास में आपनो देश अग्रणी है सा।
0: बिल्कुल, और अग्रणीय तो है ही है और आगे और बढ़े है या कह सका आपा की चांद सितारा छुए आपनो देश को हर एक नागरिक, और इसके लिए जो नई नई तकनीका है बाने अपनानो चाहिए। और जब नई तकनीका की बात आवे ना तो आज एक बहुत ही बढ़िया विशेषज्ञ जानकार से मुलाकात हुई और बहुत ही चोखी जानकारी नई तकनीका की जानकारी खेती बाड़ी से जुड़ोड़ी भी मने मिली। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो सुना दिया आपना श्रोतावन है।
1: हाँ सुनाओ सर।
0: श्रोताओ आज आपने सागे कार्यक्रम में आया है राजेश कुमार सैनी, आप उद्यान सलाहकार हो और आसो आपा जाना ला टेरेस गार्डनिंग समय की मांग। टेरेस गार्डन या टेरेस अर्थ समझ में आवे कि छत पर, और गार्डनिंग यानी बगीचो आपा लगा सका हाँ। अब तो मोटो मोटो तो मने समझ में आवे है, पर तकनीकी जो भाषा है या तकनीकी जानकारी है वे तो अपना पावना ही देशी। तो सब पहली आप कार्यक्रम में सैनी साहब घने मानू स्वागत राम राम सा।
2: राम राम सा
0: जी। यान की आज आप टेरेस गार्डन की बात कर रहे हैं, यो काई हुए है की तरीका सु एक आम श्रोता समझ सके बताओ साहब।
2: आम तौर पे ये कहा जाता है कि टेरेस गार्डन का मतलब होता है छत पे लगाए बगीचा, जो बगीचा छत पे लगाया जाए उसको टेरेस गार्डन बोलते हैं, और कुछ लोग इसको रूफ टॉप गार्डनिंग भी कहते हैं क्योंकि छत के ऊपर लगा जाता है। तो इसमें खास बात ये होती है कि पूर्व में जो हम लोग खेती करने वाले लोग हैं जो गांव में रहते थे रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ गए, शहरों में आने के बाद में जो प्लॉट लेके लोग रहने लगे तो उसपे प्लॉट बड़े लिए जाते थे और उसपे थोड़ा कुछ इलाके में खेती की जाती थी जिसको कि किचन गार्डन कहा जाता था। परंतु जैसे जैसे नगर महानगरों में बदल गए तो उसकी वजह से जमीन पे भूमि पे दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से अब खाली मकान मकान है और उसकी छत है। तो जब छत है तो उसके ऊपर खाली ये है कि छत के ऊपर आप कुछ गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, चाहे वो सब्जियों का बगीचा हो या फूलों का बगीचा हो या फिर बड़े पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों का जो शौक था प्रकृति से जुड़ाव रहना जरूरी है तो लोगों ने चालू किया अपने छत पे काम करना, तो उसे टेरेस गार्डन का नाम दिया गया।
0: जी सनी साहब बहुत चोखी बात आप कहा कि जब गांव से शहर की तरफ आया तो बड़ा जमीना का टुकड़ा लिया, आधा में घर बनायो आधा में फिर किचन गार्डनिंग।

0: करी और फिर जब दबाव बने हो तो मकान मकान रह गयो और जो वो गार्डन को जो क्षेत्र हो वो खत्म हो गयो। अगर कोई टेरिस गार्डन लगा बो चावे लो आज का दौर में तो कई चुनौतियां भी के सामने आवेली।
1: देखो सबसे पहले तो उनको अपने घर वालों को बनाना होगा कि भाई मैं छत पे ऐसा कार्य करना चाहता हूँ। घर वालों ने सपोर्ट तो किया पहली बात तो घर को
0: मोटी बात है साहब।
1: और उसके बाद में तुरंत आपको ये तय करना होगा कि भाई इसमें जो कितना खर्चा आएगा और फिर आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि मेरा जो छत है उसमें कितना लोड वो ले सकती है, उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कौन से पौधे लगाने, क्योंकि आपके वहाँ हो सकता है पानी की कमी हो। अगर जयपुर की बात करें या जयपुर के आसपास के शहरों की बात करें तो वहाँ पे पानी की कमी है, तो उसमें अपने को ये भी तय करना पड़ेगा कम पानी वाले पौधे कौन से लगाए जा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप पौधे लगाते हैं तो आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए ये पौधे को ज्यादा पानी चाहिए इसको कम चाहिए, क्योंकि कम और ज्यादा पानी वाले पौधों को पास पास नहीं लगाया जाता, क्योंकि अपने को उसमें ड्रिप इरिगेशन करना है या ऑटोमेशन करना है। तो ऑटोमेशन में क्या हो जाता है कि आपके जो पौधे एक जगह लगे हुए हैं ड्रिपर्स एक जैसे हैं तो एक जैसा ही पानी लगेगा, या तो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। तो उसमें कम वाले को कम वाले के साथ रखना है, ज्यादा वाले को ज्यादा वाले के साथ रखना है। आमतौर पे जो

0: आते तो आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए ये पौधे को ज्यादा पानी चाहिए, इसको कम चाहिए, क्योंकि कम और ज्यादा पानी वाले पौधों को पास पास नहीं लगाया जाता, क्योंकि अपने को उसमें ड्रिप इरिगेशन करना है या ऑटोमेशन करना है। तो ऑटोमेशन में क्या हो जाता है कि आपके जो पौधे एक जगह लगे हुए हैं, ड्रिपर्स एक जैसे हैं, तो एक जैसा ही पानी लगेगा, या तो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। तो उसमें कम वाले को कम वाले के साथ रखना है, ज्यादा वाले को ज्यादा वाले के साथ रखना है। आमतौर पे जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनसे ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि उनको वाटर रिक्वायरमेंट पौधों का पता नहीं होता। तो सही पौधे का चुनाव करें उसका वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस वातावरण के हिसाब से। जैसे यहाँ पे तेज गर्मी और तेज सर्दी दोनों है, तो उस समय आपको उस हिसाब से आपको पौधों का चयन करना है। दूसरा आपको ये तय करना है कि मुझे सब्जियों का बाग बगीचा चाहिए या मुझे फलों का बाग बगीचा चाहिए या मुझे रिक्रिएशनल मनोरंजन के लिए बाग बगीचा चाहिए, वो भी आपको तय करना पड़ता है। और फिर एक चीज और आती है कि आपको जो गमले काम में लेने या आपको प्लांटर बनाने, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। गमले ऐसे होने चाहिए जो वजन कम हो उसमें, ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट वाले पॉट्स रख दिए जिससे वजन वैसे ही बढ़ गया, या आपने ज्यादा मिट्टी का प्रयोग किया, मिट्टी भारी होती है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा किस प्रकार का मीडिया यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप मिट्टी यूज कर रहे हैं तो वजन ज्यादा हो गया, उसकी जगह आपको दूसरे पर्याय भी तलाशने होंगे, जैसे कोकोपिट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, परलाइट हो गया, इस टाइप की चीजों पे भी आपको जाना पड़ेगा। फिर एक चीज और है कि आपको पॉट्स पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कई पॉट्स ऐसे होते हैं जैसे आपके घर में पड़े हुए हैं, जैसे आपका 200 लीटर का ड्रम पड़ा है या 100 लीटर का ड्रम पड़ा है या 50 लीटर का ड्रम पड़ा है, उसको कट करके उसके अंदर भी आप फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, तो ये चीजों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने यहाँ ये तय कर लेना जरूरी है कि हमें करना क्या है
1: जी,
0: उसके बाद ही आप आगे बढ़े।
1: जी, चुनौतियाँ की बात आप हसैनी साहब कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ बताया, कुछ का समाधान भी आप बताया। एक बात जो हमारे मन में अटक गई और शायद श्रोता भी इस पर ध्यान चाह रहा वेला कि आप जानकारी दियो, आप कहा कि आपकी छत कत्तो वजन उठा सके है, बिल्कुल पतो कहीं करा ला आप।
0: देखिए, आप जब टेरेस गार्डनिंग करने जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी आप करेंगे वो वजन छत पे ही बढ़ने वाला है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो छत पे जो वजन बढ़ने वाला है वो किस चीज से बढ़ेगा, आप जो पॉट यूज कर रहे हैं या प्लांटर बना रहे हैं या फिर उसके ऊपर जो परगोला बना रहे हैं, तो वो वजन वो बढ़ना ही है उसपे, तो उसको लोड बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं हम लोग टेक्निकली। तो वो कैसे चेक होगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, उससे संपर्क किया जाता है और वो आके आपको बताता है ये आपकी छत इतना वजन झेल सकती है
1: जी।
0: दूसरा क्या है कि आपको जितने भी उसके क्रैक्स हैं उसमें जो दरारें हैं वगैरह उसको भी आपको ठीक करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई उसमें कोई वाटर प्रूफिंग की आवश्यकता तो है, क्योंकि जब आप उसमें पौधे लगाते हैं तो उसपे क्या है आपका पानी का रिसाव भी होगा, और ऐसा ना हो कि आपने पौधे लगाए और सीलन से आप ग्रसित हो गए, एक साइड आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं उल्टा आपको दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ गया। इसमें आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के आने से आपको दो फायदे और हो जाते हैं कि आपको एक तो लोड बियरिंग का पता लग जाता है, दूसरा क्या होता है कि आपका कॉलम कहाँ पे है, आपके जो बीम है कहाँ से जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे है, तो वो सब चीजें आपको काम आती है जब दूसरे आप प्लांटर्स बनाते हैं, तो उस चीजों में आपका सहयोग होता है, उससे जानकारी हासिल होती है आपको।
1: जी सैनी साहब, आप बोलिया कि जब पानी की व्यवस्था कोनी होवे तो आप तकनीक पर जावा हां, ड्रिप लगावा हां, और आजकल तो ऑटोमेशन भी हो गयो है, यानी कि आप समय तय कर दो पानी अपने आप ही लग जावे, लो थाने बार बार याद दिलावा की जरूरत को नहीं पड़ेगी, पौधा ने पानी देनो है, मोबाइल से भी सेटिंग हो जावे है,
0: और आप कहीं भी बैठे हैं आप चालू करके दे सकते हैं,
1: कि घर में आप नहीं भी हो तो भी आपका जो पौधा है भी तिसाया कोनी रहे। तकनीक की बात आप कर रहे हैं, सिंचाई की बात आप कर रहे हैं, प्लांटर्स की बात आप कर रहे हैं, प्लांटर्स यानी गमला देसी भाषा में आप कहवा, अगर गमला और जो बैग आवे है
0: ग्रो बैग्स
1: जाने आप कहवा, हाँ अगर बैग है तो बाकी तुलना में कौन सो ज्यादा सही रहे वजन के हिसाब,
0: ग्रो बैग्स ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि इनमें वजन कम होता है
1: जी, और दूसरों ए चाल भी जावे एक दो साल,
0: हाँ आराम से एक दो साल चल जाते हैं, ग्रो बैग्स कर सकते हैं घरेलू लेवल पे अगर आप कर रहे हैं, और अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आपको प्लांटर्स खुद इन बिल्ड करने पड़ेंगे छत के ऊपर, और उसके लिए क्या है कुछ वाटर प्रूफिंग भी करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको क्या है रूट बैरियर्स होते हैं, रूट बैरियर्स एक ऐसा चीज होती है जिसको कि चारों तरफ फिट कर दिया जाता है जिससे कि जो जड़ें हैं वो नुकसान नहीं कर पाती इमारत को
1: जी। तो आप निश्चिंत रहो, सुरक्षित प्रक्रिया है श्रोताओं, और आप जो है आप छत पर भी आप बगीचो लगा सको हो। जठे तक साग सब्जियां की बात है, फूलों का पौधा की बात है, तो थोड़ा सा लगा बाड़ो भी निश्चिंत रहे,
0: हाँ
1: लेकिन जब फलां का पौधा की बड़ा पेड़ा की बात आप करा हाँ, तो लागे है कि कटे कह तो आके बढ़वार को नहीं होवेली के फलत कौन वेलो, और या फिर या आपने जो छते बिना नुकसान पहुंचा सके है, तो एक बार हम बताओ कि की तरीका की भी की पूरी प्रक्रिया हुए है, चाहे वे जड़ा की साफ सफाई वे, चाहे ऊपर जो फल है अपना चोखा आवे, तो कई प्रक्रिया रहे है।
0: इसमें सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ता है कि आपको कौन कौन से पौधे लगाने हैं। बड़े पौधों में अगर बात करें तो हम अरेका पाम लगा सकते हैं, खजूर के पौधे लगा सकते हैं, खजूर की एक वैरायटी और आती है जिसको फोनिक्स रोबिलिनी कहते हैं, छोटा खजूर जैसा होता है वो, और चंपा लगाई जा सकती है।

0: और कुछ फाइकस की प्रजातियां ऐसी हैं जिनको लगा सकते हैं। ये देखने में सुंदर होती है, पानी की इनको जरूरत कम होती है, तो ये चीजों का आपको करना है। फूल वाले पौधे हैं जैसे बोगनवेल लगा सकते हैं, या आप हिबिस्कस जो बोलते हैं अपन वो लगा सकते हैं, एक्जोरा जो है वो लगा सकते हैं, मुराया बोलते हैं या कामिनी बोलते हैं उसको भी आप लगा सकते हैं। ये सुगंधित फूल भी हैं और खूबसूरत फूल आते हैं इस पे, तो लोग आकर्षित भी होते हैं इसको। और कम मेंटेनेंस वाले पौधे भी इस पे लगाए जा सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट हो गया, जीजी प्लांट हो गया, ड्रेसेना हो गया, एग्लोनिमा हो गई, ये चीजें हैं। कुछ आप हैंगिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं क्योंकि छत छोटी है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसपे पेड़ पौधे लगे, तो कुछ हैंगिंग पॉट्स लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट्स में क्या कर सकते हैं, आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट्स लगा सकते हैं, फिलोडेंड्रोन्स लगा सकते हैं, ट्रेडेंशिया लगा सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आपको हेल्प करती है लटकने वाले गमलों में लगा के। और दूसरा इसके अलावा जो वर्टिकल गार्डनिंग जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि अब वो स्टेज आ गई कि अब अपने पास छत भी नहीं रही
1: जी, तो आप लगा लिया साहब,
0: तो अब ये ऊभा बाग वाली बात हो गई। तो इसपे क्या होता है कि खड़ी जो आपकी दीवारें हैं उस पर आप फ्रेम फिट करते हैं, फ्रेम के अंदर आपके पैनल्स फिट होते हैं, पैनल्स के अंदर कुछ मीडिया डाला जाता है। मीडिया का मतलब होता है ऐसा पॉटिंग मिक्सचर जिसपे कि पौधों को लगाया जा सके, उगाया जा सके और जिनमें वजन भी कम हो। तो उसमें कोकोपेट, परलाइट, वर्मिकलाइट इसका मिक्सचर बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाता है, और इसमें ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जैसे बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का, और उसमें ऑटोमेशन और सोने पे सुहागा, आप कहीं पे भी बैठे आप उसको चालू कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इस डर से टेरेस गार्डन नहीं करते थे पूर्व में, कि अगर हम दो दिन के लिए या चार दिन के लिए बाहर चले गए तो हमारे पेड़ पौधों का क्या होगा, कौन इनका ख्याल रखेगा, क्योंकि पेड़ पौधों से लगाव लोगों का ऐसा है बच्चों जैसा है, तो वो अब वो डर भी खत्म हो गया क्योंकि ऑटोमेशन हो गया
1: जी। अच्छा, पानी की व्यवस्था तो चलो ऑटोमेटिक हो जावे है।
0: हाँ जी।
1: अगर टेरेस गार्डन की बात करा, छत है, खुली छत है, आप गार्डन लगा लिया, अब धूप आवे है, जब बरसात बहुत तेज आ जावे है और आप घरा कोनी, की तरीका सो आपका पौधा जो है वे बच सके है तेज धूप और बरसात सो, एक भी कोई सुविधा है, कोई छांव आपा कर सका?
0: हाँ जी, जैसे अपने यहाँ पे जयपुर है या राजस्थान है, सबसे ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, और मैं तो कहूंगा कि प्रकाश की तीव्रता को देखें तो 1,20,000 लक्स यहाँ पे गर्मियों में प्रकाश की तीव्रता रहती है, और जो पौधे आमतौर पे होते हैं उनको 50 से 55,000 लक्स के आसपास की जरूरत होती है, यानी 50% कम की। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि ऊपर एक शेड नेट लगाते हैं जो कि 50% वाला होता है, 50% छाया देने वाला। तो इसका मतलब क्या है, सूर्य की जो तीव्रता आ रही है, प्रकाश की तीव्रता आ रही है, उसको 50% वो कम कर देता है। तो आमतौर पर जो लगाया जाता है वो 50% वाला लगाया जाता है,
1: जो
0: हरे रंग का हो सकता है। तो ये एक चीज है। और दूसरा क्या है, बात रही तेज बारिश का, तो कई बार क्या होता है लोग अपने छत के ऊपर बगीचा लगाते तो उनके मन में ये होता है कि मैं यहाँ पे लॉन भी लगाऊं, घास भी लगाऊं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब मैं तो आर्टिफिशियल से खुश हो जाऊंगा, पर कुछ लोग होते हैं नहीं, मुझे तो आर्टिफिशियल चाहिए नहीं, मुझे तो ओरिजिनल चाहिए, जो जमीन पे घास लगती है वही लगानी है छत पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको एक छत तय करनी पड़ती है कहाँ पे आपको लगाना है, उसके बाद में उसका वाटर प्रूफिंग करना है, कोई दरार वगैरह है उसको बंद करना है, और उसके बाद में उसके ऊपर ड्रेन सेल्स आते हैं, प्लास्टिक की एक ट्रे टाइप की आती है, उसको बिछाया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है और एक पूरी जाल बिछा दिया जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा आता है जिसको जियो मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको कपड़े को फैलाया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर मीडिया डाला जाता है, मीडिया मतलब जिसमें कि आपको घास को उगाना है, तो वो उसमें मिट्टी भी होती है, वर्मिकलाइट होता है, परलाइट होता है, कोकोपिट होता है, ये सब चीज मिला के मिश्रण तैयार किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट भी दिया जाता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके, और उसके बाद में जो कार्पेट ग्रास होती है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको बिछा दिया जाता है, और उसके बाद में उसको पानी दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा पानी लगता है वो ड्रेन सेल के जरिए नीचे निकल जाता है और ड्रेन होकर चला जाता है। तो ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखा जाता है टेरेस गार्डनिंग में, तेज बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी। अच्छा, बात करा आपा कि टेरेस गार्डन लगा लिया,
0: हाँ जी,
1: और प्रक्रिया भी समझ लिया आपा, अगर सब्जियां की बात करा,
0: हाँ जी,
1: सब्जी लगानी है, कई कई प्रक्रिया रहवे है और कई सावधानियां आपा ने रखनी चाहिए जी जब आपा टेरेस गार्डन में सब्जी लगावा।
0: देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीजन की कौन सी सब्जियां होती हैं। तो आप देख लीजिए, जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप बोलेंगे गर्मियों की सब्जियां, तो उसमें आप भिंडी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, घिया लगा सकते हैं, गवार, टिंडा, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, तुरई, तर ककड़ी, कोला, खरबूजा, तरबूज, लोबिया, पालक, धनिया, चौलाई, पपीता भी छत पे लगाया जा सकता है टेरेस गार्डन पे। ऐसे ही बरसाती का आपको निकाल लेना है, बरसाती सीजन यानी कि मई से जुलाई का जो है उसके लिए आपको कैलेंडर रेडी रखना है। ऐसे ही आपको सर्दियों में जो जाड़े की सब्जियां होती है अगस्त से लेकर जनवरी के बीच में, उसका कैलेंडर आपको रेडी रखना है, पहला काम तो ये। दूसरा, बीज कहां उपलब्ध होगा वो आपको जानकारी होनी चाहिए, कब लगाना है वो चार्ट बताएगा आपको, और किस में लगाना है। कई बार क्या होता है कि मुझे लगाना है पालक और मैंने जो गमले गहरे होते हैं उसमें लगा दिया, क्योंकि पालक की जड़ ज्यादा जाती नहीं है, तो मुझे कम गहराई वाले चीजों का इस्तेमाल करना है, जैसे धनिया लगाना है, पुदीना लगाना है, उसको कम गहराई वाले। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से कंटेनर में लगाई जाएगी या कौन से पॉट में लगाई जाएगी। दूसरा, घर में कई बार क्या होता है, कई चीजें भंगार के रूप में पड़ी होती है, उसका सदुपयोग हो सकता है, जैसे कुछ डब्बे हैं जो 50 लीटर का कोई कैन आपके पास खाली हो गया, आप

0: उसमें कुछ लगा लिए, कोई 100 लीटर का अगर आपके पास कैन है, ड्रम है, तो उसके अंदर आप फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें होती है ड्रेनेज
1: जी।
0: अगर आपने जो भी कंटेनर जिसमें आप सब्जी लगा रहे हैं उसमें अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखा तो आपकी सब्जियां अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी और हो सकता है उसमें रोग ज्यादा आए और मर भी जाए। कि एक चीज और अपने को विशेष ध्यान रखना है, वो है कि अपने को ध्यान रखना है कि सर्दी ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है। सर्दी ज्यादा हो रही है तो उसमें क्या करना है, अपने को ऊपर जो नेट लगा रखी है उस नेट को अपने को पाला पड़ेगा तो उस समय उसको फैला देना है, तो पाले के प्रकोप से वो बचाएगी और दिन में उसको हटा लेनी है। तो उसको स्लाइडिंग भी बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा कर सकते हो। और गर्मियों में क्या है कि अपने को पूरे दिन गर्मी नहीं होती है, सुबह का जो समय कम गर्म होता है, दोपहर का जो पीरियड होता है ज्यादा गर्मी होती है, फिर शाम को कम हो जाती है। तो जो टॉप पीरियड है जब गर्मी ज्यादा पड़ती है 11 से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक, उस समय आप उसको फैला दें, बाद में इकट्ठा कर दें। तो ये नेट भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसमें आप चाहो तो ऊपर फॉगर्स भी लगा सकते हैं, छोटा ये सिस्टम है। आजकल क्या हर चीज में जितना आप ऑटोमाइजेशन पे जाएंगे, जितना आप टूल्स को यूज करेंगे, आपकी मेहनत कम हो जाती है।
1: सैनी साहब जाना कि जो टेरेस गार्डन है,
0: हाँ जी,
1: अगर इन्हें कोई लगावे है तो कई लाभ इसमें हो वह?
0: देखिए सबसे बड़ा लाभ इससे ये है कि आपको हमेशा प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता है
1: जी।
0: दूसरा जो कहें तो आपको शुद्ध और विष रहित फल और सब्जियां खाने को मिलती है। आप उगाएंगे तो आप खाएंगे, खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज बहुत सारी सब्जियां हम सेवन करते हैं जो कि ऐसी जगह से आ रही है जिसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड है और उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है और असाध्य बीमारियां जैसे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो रही हैं, तो उनसे बचाव हो सकता है। और भाग दौड़ की जिंदगी है, हम भाग रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आदमी भागता रहता है, समय है नहीं, अपने लिए भी नहीं है
1: जी।
0: तो कहने का मतलब ऐसे में क्या होता है कि आदमी तनाव से ग्रसित रहता है, पर आपने रूफटॉप गार्डन बना रखा है या आपने सब्जियां लगा रखी हैं छत के ऊपर, बगीचा लगा रखा है, तो कुछ समय जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन फील होता है, आप स्ट्रेस आपका दूर होता है। फिर महिलाएं की बात करूं तो गृहणियां को कभी कभी क्या होता है, सब्जियों के लिए धनिया चाहिए, ताजा धनिया चाहिए, मिर्ची चाहिए, पुदीना चाहिए, तो उसको अगर आप बाजार से लाओ कितना भी लाओ लेकिन वो ताजा नहीं मिलेगा। लेकिन एक वही चीज अगर आप अपनी छत से तोड़ के अगर सब्जी बना रहे हैं पे डाल रहे हैं तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। कहा यह जाता है कि लोगों के अगर दिल में पहुंचना है तो उसका रास्ता
1: पेट से पेट।
0: तो ये चीजें हैं। बच्चों को इससे फायदा ये होता है कि बच्चे जो है आज पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन उसको व्यवहारिक तौर पे सीखने का मौका जब वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, पौधों से देखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, मटर का पौधा कैसा होता है, टमाटर का पौधा कैसा होता है, अगर मूंगफली आपने लगाई तो मूंगफली का फूल ऊपर आता है लेकिन मूंगफली लगती जमीन में कैसे, तो पैगिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें जो तकनीक है उनको समझने को मिलती है। और एक चीज और है जो अर्बन हॉट आइलैंड इफेक्ट है उससे आपको काफी हद तक निजात मिलती है। आज क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंक्रीट के जंगल तैयार हो गए, पेड़ काट दिए हमने और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, उससे क्या हो गया कि आपकी बिल्डिंग का जो टेम्परेचर है वो बाहर के आसपास के टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, तो उसमें आपको उससे भी निजात मिलती है। ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट आ गया है, ग्रीन आप ग्रीनरी जितना करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, एसी कम चलाने पड़ेंगे, कूलर कम चलाना पड़ेगा, बिजली बिल ना के बराबर आएगा या कम आएगा, तो ये सब चीजों का आपको फायदा मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक अच्छा शौक है, जिंदगी में आदमी को शौक पालना चाहिए, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के पास कोई सी प्रकाश का शौक नहीं है तो उसकी जिंदगी जो है एक तरह से नीरस हो जाती है।
1: अगर क्यों भी करवाने नहीं मिल रहे है तो छत अपनी है, आप पौधा लगावो शुरू करो। चलता चलता एक लाइन में महाका श्रोताओं ने कहीं के पूछा
0: छत चाहे छोटी हो या बड़ी, टेरेस गार्डन जरूर लगाएं, टेरेस गार्डन करें, खुशहाली लाएं जीवन में।
1: बिल्कुल, और जैसा सैनी साहब बताया मन तो लिखवा को शौक है, आप सब जानो ही हो कि छत छोटी हुए या बड़ी सदा रहे हरी। तो ये बात के साथ ही आप वहाँ के कार्यक्रम में आया राजेश कुमार सैनी, उद्यान सलाहकार, बहुत चौकी सलावा आप माने दिया, एक लिए घने मानू धन्यवाद सा। और देखो बहुत बढ़िया जानकारी आज तो मैंने यह लागू कि मतलब जब मैं सैनी साहब से डॉक्टर साहब से बात कर रही थी कि अगर जगह नहीं भी है और इच्छा शक्ति वे न तो पेड़ पौधा तो आप लगा सका था। और जब आने अति चौकी जानकारी आपने मिली गई आंसू तो मैंने लगे मैं भी बहुत चौकी जानकारी दिलाई हूँ, चौका चौका सवाल पूछी हूँ। तो
2: हाँ चंचल बहन, और गणी चौकी जानकारी ते भी डॉक्टर साहब सु विशेषज्ञ सु महासभ तक और अपना सगड़ा हेतालु श्रोतागण तक पुगाया, इके लिए था को और अपना विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार सैनी जी को घणो मानसु धन्यवाद छे सा। लेकिन चंचल बहन ते तो जानो ही हो सा कि आपने आकाशवाणी री रीति कोनी के साथ की आपा करो करो धन्यवाद देवा, तो चाला सगड़ा रलमेल सुना और सुनावा एक चोखो सो लोकगीत।
1: बिल्कुल सा।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लोग, पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है
0: रे बेटे?

0: एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: तो देखो, गीत की स्वर लहरियां के सागे सागे आपा भी बयार भयो समय भी। और अब कार्यक्रम में बस अत्रो ही समय बचो है कि आपा कह दिया कि इस कार्यक्रम में सुनोड़ी बाता ने सुनो ही नहीं गुणों भी। और अब अगला कार्यक्रम की तैयारी करवा के लिए जानो वेलो, तो करनो वेलो आपा ने अपना श्रोता वासू
4: राम राम सा।
5: थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शुदा फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। अभी ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था मासूम, आवाज थी अनूप घोषाल की।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ें थी। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। फिल्म का नाम था मरते दम तक। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें, मदन मोहन का संगीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। फिल्म आखिरी दांव।

0: लो
1: जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम तो जानते

0: कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: शंकर जयकिशन का संगीत था, फिल्म थी दिल तेरा दीवाना, आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजों में नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, फिल्म दिल है तुम्हारा से ये गीत।

चल दिए। श्रोताओं, दिल है तुम्हारा इस फिल्म के गीत के बाद आपको सुनवा रहे वीर सारा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजें।

मैंने प्यार किया, ये गीत इस फिल्म से सुनवा रहे लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ें।

चुनाव है ना फिल्म का गीत था लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 8:15 होने को है। आप सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में कानागीर और साथियों के गाए लोक भजन।

सब कोई गावे भोले की महिमा, सब कोई गावे सुर शाम की महिमा।

भोले की झोली में क्या क्या विराजे, भोले की झोली में। अरे क्या क्या विराजे, भोले क्या क्या विराजे।

भोले की मेहमा सब कोई गावे बाबा भोले की मेहमा सब कोई गावे भोले बाबा की मेहमा सब कोई गावे सुर श्याम की मेहमा।

0: उन्हें अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: हेलो, हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

बारह बजे का टेम हुआ जब ऋषि जी का मन भर गया। बारह बजे का टेम हुआ जब ऋषि जी का मन भर गया। खोला नहीं किवाड़ हूर ने अपनी आड़ी सब कर गया।

0: दिन छिपका डरे लागे बाबा काली रात अंधेरी में।
1: श्रोताओं, लोक संगीत में आप सुन रहे थे कानागीर के गाए लोक भजन। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आप सुनिए समाचार संध्या और अंग्रेजी में ही समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
3: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
3: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
2: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
3: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
2: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और

0: सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
2: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
3: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2,000 से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75,000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये $43.81 अरब तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर $26.86 अरब पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।

0: We need to develop sports infrastructure.
1: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
0: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
2: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कंफर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक
6: अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी,

और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है. अब सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम जिन्हें हम मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं.
2: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
3: आइए सुनते हैं मंजिल मंजिल फिल्म का गाना. आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है संगीत आर डी बर्मन का.

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: यशोदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदन आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बोलने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आप

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर।
1: मैं

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से MBA किया। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक तब भी जारी रहा और उनकी कॉपी राइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा। तब तक प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छप कर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है, वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए, ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

प्रसून जोशी ने इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती की पटकथा भी लिखी और इस फिल्म के गीत भी रचे। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी

इस फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीन पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। बोलो ना।

0: जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।
1: अरे शक्ति मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहाकार।

0: करके सांस सांस तो भट्टी, अब तू जाग मिलखा, बस तू भाग मिलखा।
1: इस फिल्म में ये मौज मस्ती भरा गाना भी प्रसून जोशी ने लिखा, जो शायद फौजी बैरकों में मौज मस्ती का सबब बन चुका है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था, और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा।

0: प्रसून जोशी का रचना कर्म अभी भी जारी है और उनके चाहने वाले उनसे नित नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोंधी मिट्टी की सुगंध है प्यार, ठंडी पुरवाई है प्यार, बसंत की नवोदित कलियां है प्यार, भावनाओं की नदी है प्यार, सितार के तार से झंकृत मीठी धुन है प्यार, धूप की तपिश के बाद ठंडी छांव है प्यार, प्यार एहसास है, प्यार नीम है, गुलाब है, बेला है, चंपा चमेली है प्यार।

बहार की शबिस्ता में सिर्फ खुशियों की कलियां ही नहीं चिटकती, दर्द का सैलाब भी उमड़ता है। प्यार के सागर में दो बूंद खारा नमक भी घुल जाता है। जब प्रतीक्षा के पल ठहर जाए, टीस भी उठती है मन में। प्यार के मौसम में आए दर्द की आंधी या बहे टीस का झरना, भला किसे परवाह।

सुंदर सी दुनिया प्रेम की, फिर अकुलाहट क्यों, फिर ये बेचैनी क्यों? बेचैन मन कहता है कुछ पहाड़ों से, नदियों और झरनों से, फूल पर मंडराती तितलियों से, हाथ में उल्टा आईना पकड़कर आसमान को उल्टा अपने सामने देखा। ये सब मुमकिन है प्यार की दुनिया में।

चार तूफान है, आंधी है, इसका नजारा साहिल से नहीं बल्कि पानी में उतर कर जाना जा सकता है। सागर की गहराई है प्यार, करता है प्यार कोई तो बदल जाता है उसका मन, बदल जाती है दुनिया, पूरी कायनात का नजारा कुछ और ही हो जाता है जब जिया जाता है प्यार के पलों को।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। स्मृतियों का गुलमोहर खिला है, लम्हों के पलाश छतनार हुए हैं, प्यार की रात रानी महक रही है। रेडियो से आप सुन रहे हैं छाया गीत। हम कर रहे हैं गुफ्तगू उनसे जिन्होंने भेजी है प्यार की सौगात।

कहा कुछ उन्होंने, सुना कुछ दिल ने, बन गया प्यार का अफसाना। खूबसूरत लम्हों को तह कर संजो लिया है दिल की अलगनी में, आंखों के सामने सिर्फ प्यार की दुनिया है।

एक जमाने में प्यार का इजहार करना बड़ा मुश्किल होता था। चिट्ठियों के जरिए या गानों के जरिए प्यार का इजहार किया जाता था। सूचनाओं संदेशों के युग में जीने वाले लोग क्या जाने प्यार के इजहार के सही मायने क्या होते हैं। अपनी प्यार भरी बातें गानों के साथ जोड़कर करते हैं इजहार कुछ यूं।

लूटा न करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो। वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक। फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर तोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी।

एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा, मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम, सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं, फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला। ओ दिल

हवा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क

ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान।

0: विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तरफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकुल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलुकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:53 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।

बातें कागज पर लिखी जाती हैं और कुछ दिल में, और जब दिल की बात फूलों के रंगों से लिखी जाए ना, तो उसका जवाब भी शायद एक मुस्कान।